0: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ड जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट, बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 03003385569।
1: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
2: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तियाब आई।
1: हाँ यचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी।
2: राब्ते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 03003204372 आई 02424601000।

0: कपड़े जी फैक्ट्री के लगल बाहे ते जब्तो आने जी कोशिशों जारी आहिं द फायर टेंडर्स बाहे विसारण जी कोशिशन में रुदलान चीफ फायर ऑफिसर जो चवण आहे त फैक्ट्री ताईं पहुचण जो रस्तो न हुजण सबब दुखायूं पेश अची रहियूं आहिनि। मुतासिर फैक्ट्री समेत भरपासे वारनि कंपनीनि मां बि अमले खे ॿाहिरि कढियो वियो आहे। पाणीअ जी कोर पूरी करण लाइ वाटर टैंकर्स सां मदद वरिती पई वञे। फैक्ट्री खे बाहि लॻण जो कारण मालूम न थी सघियो। ईरान वट फौज ऐं पुलिस खे पघार ॾियण जा पैसा आणे विढ़ण लाइ तयार न आहिनि। ईरान आण वञण लाइ तयार न आहे पर जल्द शिकस्त क़बूल कंदो। ईरान हुकूमत जो खज़ानो खाली आहे। हाणे मुआहिदो अमेरिका जे शर्तनि ते थींदो। मुआशी दबाव वधाइण जो मतिलब इहो न आहे त हाणे ईरान ते हमलनि जो इम्कान ख़तम थी वियो आहे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जॉइंट बेस खां ॾखण जे शहर मेटल बेस रवानगी खां अॻु मीडिया सां ॻाल्हि ॿोल कंदे चयो त ईरान अमेरिका सां इख़्तिलाफ़नि बावजूदि मुआहिदो करणु चाहे थो पर तेहरान अञा ताईं सही मुआहिदे लाइ तयारु नाहे। हाणे ॾिसणो पवंदो त सूरतयाल कहिड़ो रुख इख़्तियारु करे थी। आबन हर्मुज़ ऐं सामूंडी किनारनि वारे ज़मीनी रस्तनि ते अमेरिका जो कंट्रोल आहे। मुआहिदो थियण ताईं ईरानी नाकाबंदी जारी रहंदी। ईरान ते मुआशी पाबंदियुनि वारे पॉलिसियुनि खे बि नाकाम थींदे ईरानी परॾेही वज़ीर अब्बास इराकचे जे अमेरिकी मुआशी पाबंदी वारे फ़ैसिले ते तनक़ीद। ईरान खे धमकियूं पुराणियूं चहिरा नवां आहिनि। ईरान ते 14 साल अॻु मड़ियल तारीख़ जूं तबाहकुन पाबंदियूं बि नाकाम थियूं। 5 महीना अॻु ईरान खे गैर मशरू तौर ते हथियार फिटा करण जी शर्त बि नाकाम थी। ईरानी परॾेही वज़ीर आगा अब्बास इराकची अमेरिकी धमकियुनि जे रदे अमल ते चयो आहे त ईरान ते मुआशी सभ खां वॾियूं पाबंदियूं मड़ियूं वयूं आहिनि पर उन्हनि जो नाकाम थियण तय आहे। पीटीआई बानी खे अलशफा अस्पताल मुंतकिल करण बदिरां पिम्स मां तिबी मुआइनो कराए ॿीहर अडियाला जेल मुंतकिल करण ते हुकूमत ख़िलाफ़ तोहीन अदालती दरख़्वास्त दाख़िल कराइण जो ऐलान। पीटीआई रोडनि रस्तनि ते एहतजाज करण सां गॾु क़ौमी असेंबलीअ तां इस्तीफ़ाउनि जी धमकियुनि बि ॾेई छॾी। 27 सेप्टेम्बर ते लॉन्ग मार्च वारो सर्वे बरक़रार। इस्लामाबाद में पीटीआई अपोज़िशन जे ॿियनि जमायतुनि जे घरे इजलास खां पोइ मीडिया सां ॻाल्हाईंदे अॻवाणनि चयो आहे त बानी पीटीआई खे शिफ़ा अस्पताल मुंतकिल न करे हुकूमत अदालती फ़ैसिले सां गॾु आईन ऐं कानून जी बि तोहीन कई आहे। अॼु तोहीन अदालत जी दरख़्वास्त दाख़िल कराई वेंदी। पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गोहर चयो आहे त हुकूमती अमल खां पोइ को जवाज़ नथो ठहे त असां हिन ऐवान में वेठल हुजूं। जेकॾहिं अदालती हुकुम ते अमल करणु मुश्किल आहे त पोइ जमहूरियत कीअं हलंदी। सलमान अकरम राजा चयो त हुकूमत शिफ़ा अस्पताल ॿाहिरां हुजूम गॾु थियण वारो कूड़ो बयानो ठाहियो। हाणे फ़ैसिलो आवाम खे करणो आहे त हीउ केस अदालत में विढ़जे या रोडनि ते।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, ठरी रोड, मेहरापुर। 03003385569।
3: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो GFM 94।
4: अस्सलाम वालेकुम अदा।
5: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
4: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ही न तो, छा कजे?
5: अदा दुकान जी मशहूरी कराई अथई?
4: न अदा।
6: यार अॼुकल्ह शहरन तोड़े गोठन में जीअं मेरापुर FM 94 ई हले थो। मूं पंहिंजो दुकान खोलियो त FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार अहिड़ो कामयाब हुयो जो एड बंदि कराइण ते दिल्ली नथी चवे।
4: मुंहिंजे दुकान जी एड हलंदी?
5: हा अदा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मीलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइज़िंग हलंदी।
4: अदा जल्दी कर, मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
6: ऑफिस जी मेरापुर FM 94, नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालानी रोड, मेरापुर।
5: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी।
7: 03013992836।

0: लो आगे तुम्हारा घर।
1: थैंक यू फॉर द लिफ्ट।
0: यू वेलकम।
1: सी यू टुमारो।
0: ओके अनिष्का, आई फॉरगॉट, ये गिफ्ट तुम्हारे लिए।
1: यू गॉट अ गिफ्ट फॉर मी? बैंडेड।
0: रखो, तुम्हें जरूरत पड़ती रहती है।
1: जब तुम मेरे साथ होते हो ना, तभी ये सब उल्टी सीधी चीजें होती है।

0: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, खरी रोड, मेहरापुर, 03003385569।
1: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलस होंडा मोटरसाइकिल चौक पर एतमाद, अइमा अख्तियार 3S डीलर, आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल, कंपनिया जे मुकरर कर रेट ते दस्तियाब है। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर, सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आए। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए, जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जैर निगरानी। आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर, राप्ती जिलाई, आसिम हुसैन आराई, 03073592120।
2: अपना शहर अपना घर मेहरापुर, और मेहरापुर की आवाज GAFM 94।

0: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन, मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, शानदार तालीमी इमारत, प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन, एयर कंडीशन एकेडमिक ब्लॉक का इनेकाद, मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला, सरसब्ज बागीचा, बेहतरीन फर्नीचर, शानदार कंप्यूटर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स, ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत, केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जा, एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिले तहसीन नताइज, खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले, तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले, स्टडी टूर्स, अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें। मजीद राब्ते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन, मैनेजिंग डायरेक्टर मजहर स्कूल सिस्टम, 03000027234, निसार अहमद मेमन प्रिंसिपल मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, 03013865453।
1: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज, एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए, घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें। रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385569।
2: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामूं वधण बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेहरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमबी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर।

0: मरीजन के दवा स्टोर दा वठनी पौंदी मायरे अमराज नक कन गलो पुरानो नजलो निछो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंग टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वजन जो न वधण उन्हें सभी बीमारियों जो कामयाब इलाज कयो वने तो राबते लाए 0301-9196-851।
1: मेरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
2: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तयाब आई
1: हाने यचो मेरान आयरन स्टोर नज़द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी
2: राबते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 03003204372
3: अस्सलाम वालेकुम अदा
4: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
3: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
4: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
3: न अदा
1: यार आजकल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर एफएम 94 ही हले थो मो पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
3: मुझे दुकान जी बेड हलंदी
4: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए
3: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
1: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नज़द गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर
4: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
5: 03013992836
6: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो जी एफएम 94

0: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
1: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GFM 94
2: Studio, Season 15.

अंतरराष्ट्रीय गर्म मसाला खबर अज भारत अंतरराष्ट्रीय पद्धर से फिर सुर्खियां विच रहा।

आहिनि। मुतासिर फैक्ट्री समेत भरपासे वारनि कंपनीज मां बि अमले खे ॿाहिरि कढियो वियो आहे। पाणी जी पोर पूरी करण लाइ वाटर टैंकर्स खां मदद वरिती पई वञे। फैक्ट्री खे बाहि लॻण जो कारण मालूम न थी सघियो।

ईरान वट फौज ए पुलिस के पगार देने जा पैसा विरण लाय हथियार ना ईरान आन मनण लाय तैयार ना पर जल्द शिकस्त कबूल कंदो ईरान हुकूमत जो खजानो खाली है हाँ मुआहदो अमेरिका के शर्तन से मुआशी दबाव वधाण जो मतलब यो ना तो हाँ ईरान से हमलन जो इम्कान खत्म थी वो है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ज्वाइंट बेस एंड खान दखण कैरोलिना के शहर मटेरियल बेंच रवानगी का अग मीडिया से गाल बोल कंदे है तो ईरान अमेरिका से इख्तिलाफन बावजूद मुआहदो कर चाहे तो पर तेहरान अजा ती सही मुआहदे लाय तैयार ना हाँ ऐसो पवन तो सूरत हाल कड़ो रुख इख्तियार करे थी। आबना हरमुज ए समुंडी किनारे वाले समूरी जमीनी रस्तन से अमेरिका जो कंट्रोल है मुआहदो थे ईरानी नाकाबंदी जारी रही।

0: ईरान ते मुआशी पाबंदियुनि वारी पॉलिसी बि नाकाम थींदी। ईरानी परडेही वज़ीर अब्बास इराक़ी जी अमरीकी मुआशी पाबंदी वारे फ़ैसिले ते तनक़ीद। ईरान खे धमकियूं पुराणियूं, चेहरा नवां आहिनि। ईरान ते 14 साल अॻु मरियल तारीख़ जूं तबाहकुन पाबंदियूं बि नाकाम थियूं। 5 महीना अॻु ईरान खे गैर मशरू तौर हथियार फिटा करण जी शर्त बि नाकाम थी। ईरानी परडेही वज़ीर आगा अब्बास इराक़ी अमरीकी धमकियुनि जे रदि अमल ते चयो आहे त ईरान ते मुआशी सभ खां वॾियूं पाबंदियूं मरियूं वयूं आहिनि, पर उन्हनि जो नाकाम थियण तय आहे। पीटीआई बानी खे अलशफा अस्पताल मुंतकिल करण बदिरां पिम्स मां तिबी मुआइनो कराए ॿीहर अडियाला जेल मुंतकिल करण ते हुकूमत ख़िलाफ़ तोहीन अदालत जी दरख़्वास्त दाख़िल करण जो ऐलान। पीटीआई रोडनि रस्तनि ते एहतजाज करण सां गॾु क़ौमी असेंबलीअ तां इस्तीफ़ाउनि जी धमकी बि ॾेई छॾी। 27 सेप्टेम्बर ते लॉन्ग मार्च वारो सन बि बरक़रार। इस्लामाबाद में पीटीआई ऐं अपोज़िशन जे ॿियनि जमायतुनि जे गॾियल इजलास खां पोइ मीडिया सां ॻाल्हाईंदे अॻवाणनि चयो आहे त बानी पीटीआई खे शिफ़ा अस्पताल मुंतकिल न करे हुकूमती अदालत फ़ैसिले सां गॾु आईन ऐं कानून जी बि तोहीन कई आहे। अॼु तोहीन अदालत जी दरख़्वास्त दाख़िल कराई वेंदी। पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गोहर चयो आहे त हुकूमती अमल खां पोइ को जवाज़ नथो ठहे त असां हिन ऐवान में वेठल हुजूं। जेकॾहिं अदालती हुकुम ते अमल करणु मुश्किल आहे त पोइ जमहूरियत कीअं हलंदी। सलमान अकरम राजा चयो आहे त हुकूमत शिफ़ा अस्पताल ॿाहिरां हुजूम गॾु थियण वारो कूड़ो बयानो ठाहियो। हाणे फ़ैसिलो अवाम खे करणो आहे त हीउ केस अदालत में विढ़जे या रोडनि ते। कसम खणी चवां थो त बानी पीटीआई जी सिहत बिल्कुलु ठीकु आहे। सिहत जे मामले खे सियासत जे वर चाढ़णु न घुर्जे। दिफ़ा वारे वज़ीर ख्वाजा आसिफ़ जो क़ौमी असेंबलीअ में ख़िताब। ख्वाजा आसिफ़ चयो आहे त पीटीआई बानी जी अख बहितर थी रही आहे। ब्लड प्रेशर जी शिकायत आहे, उन लाइ बि इलाज जारी आहे। माज़ी में नवाज़ शरीफ जी सिहत ते मज़ाक उॾायो वियो। बानी पीटीआई पाण बि मज़ाक उॾायो, जंहिं जूं केतिरियूं ई वीडियोज़ मौजूदु आहिनि। हुननि खे हाणे अहसास थियो हूंदो त बीमारी हिकु हक़ीक़त हूंदी आहे।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: मेहरान आयरन स्टोर हालाणी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
3: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश ऐं रंग वगैरह बाजार खां बारिया दस्तियाब आहिनि।
2: हाणे अचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालाणी।
3: राब्ते लाइ प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 03003204372 ऐं 02424601000।
4: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 03008 5569।
5: अस्सलाम वालेकुम। अदा
6: वालेकुम अस्सलाम। अदा छो परेशान आई?
5: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ई न तो, छा कजे?
6: अदा दुकान जी मशहूरी कराई अथई?
5: न अदा
2: यार, अॼुकल्ह शहरनि तोड़े गोठन में जीअं मेरापुर FM 94 ई हले थो। मूं पंहिंजो दुकान खोलियो त FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार अहिड़ो कामयाब वियो जो एड बंदि कराइण ते दिल्ली नथी चवे।
5: मुंहिंजे दुकान जी भेट हलंदी?
6: हा अदा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मीलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइज़िंग हलंदी आहे।
5: अदा जल्दी कर, मूंखे मुंहिंजी एड्रेस ॿुधा।
2: ऑफिस जी मेरापुर FM 94, नज़्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालाणी रोड, मेरापुर। राबते लाइ मंसूर अहमद मेमण 03013803847।
7: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो GAFM 94।

0: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त, बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, खरी रोड, मेहरापुर, 0300-338-5569।
1: अपना शहर, अपना घर, मेहरापुर, और मेहरापुर की आवाज़ GAFM 94।

0: लड़की की खातिर हमें मार दो, मार दो हमें।
1: तुम नहीं जानती हो तुम्हारी जिंदगी कैसे बर्बाद कर सकता है। सारे को तो हम खो चुके हैं, तुम्हें नहीं खोना चाहते।
2: इस लड़की को ढूंढने में उसका सुकून है, जो लड़की उसको नहीं मिलेगी खुद ही सुकून आ जाएगा उसे।

खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज, एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, खरी रोड मेहरापुर, 03003385 69।

0: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज। एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राबता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385569। खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल, गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राबता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385569। खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है गहरी सफाई और फोरी ग्लो, जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ, तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385569।
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज। आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चोपर एतमाद, अइमा अख्तियार 3S डीलर, आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल, कंपनी जे मुकरर कल रेट ते दस्तियाब है। सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर, सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए, जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जेर निगरानी। आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाईपास नज़्द रेलवे लाइन मेहरापुर, राप्ते जिलाए आसिम हुसैन आराई, 03073592120।
4: अपना शहर अपना घर मेहरापुर, और मेहरापुर की आवाज GAFM 94।

ईरान वटि फ़ौज ऐं पुलिस खे पघार ॾियण जा पैसा ऐं विढ़ण लाइ हथियार न आहिनि। ईरान आन मञण लाइ तयारु नाहे, पर जल्द शिकस्त क़बूल कंदो। ईरान हुकूमत जो ख़ज़ानो ख़ाली आहे। हाणे मुआहिदो अमेरिका जे शर्तनि ते थींदो। मुआशी दबाव वधाइण जो मतिलब इहो नाहे त हाणे ईरान ते हमलनि जो इम्कान ख़तम थी वियो आहे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प ज्वाइंट बेस एंड खां ॾखण किरोलिना जे शहर मटेरियल बेंच रवानगीअ खां अॻु मीडिया सां ॻाल्हि ॿोल कंदे चयो आहे त ईरान अमेरिका सां इख़्तिलाफ़नि बावजूदि मुआहिदो करणु चाहे थो, पर तेहरान अञा ताईं सही मुआहिदे लाइ तयारु नाहे। हाणे ॾिसणो पवंदो त सूरत हाल कहिड़ो रुख इख़्तियार करे थी। आबना हरमुज़ ऐं सामूंडी किनारनि वारे समूरी ज़मीनी रस्तनि ते अमेरिका जो कंट्रोल आहे। मुआहिदो थियण ताईं ईरानी नाकाबंदी जारी रहंदी।

0: ईरान ते मुआशी पाबंदियुनि वारी पॉलिसी बि नाकाम थींदी। ईरानी परडे॒ही वज़ीर अब्बास इराक़ची जी अमरीकी मुआशी पाबंदी वारे फ़ैसले ते तनक़ीद। ईरान खे धमकियूं पुराणियूं चेहरा नवां आहिनि। ईरान ते 14 साल अॻु मरियल तारीख़ जूं तबाहकुन पाबंदियूं बि नाकाम थियूं। 5 महीना अॻु ईरान खे गैर मशरू तौरु हथियार फिटा करण जी शर्त बि नाकाम थी। ईरानी परडे॒ही वज़ीर आगा अब्बास इराक़ची अमरीकी धमकियुनि जे रदे अमल ते चयो आहे त ईरान ते मुआशी सभ खां वॾियूं पाबंदियूं मरियूं वयूं आहिनि, पर उन्हनि जो नाकाम थियण तय आहे। पीटीआई बानी खे अल शफा अस्पताल मुंतकिल करण बदिरां पिम्स मां तिबी मुआइनो कराए ॿीहर अडियाला जेल मुंतकिल करण ते हुकूमत ख़िलाफ़ तोहीन अदालत जी दरख़्वास्त दाख़िल करण जो ऐलान। पीटीआई रोडनि रस्तनि ते एहतजाज करण सां गॾु क़ौमी असेंबलीअ तां इस्तीफ़ाउनि जी धमकी बि ॾेई छॾी। 27 सेप्टेम्बर ते लॉन्ग मार्च वारो सन बि बरक़रार। इस्लामाबाद में पीटीआई ऐं अपोज़िशन जे ॿियनि जमायतुनि जे गॾियल इजलास खां पोइ मीडिया सां ॻाल्हाईंदे अॻवाननि चयो आहे त बानी पीटीआई खे शिफ़ा अस्पताल मुंतकिल न करे हुकूमती अदालत फ़ैसिले सां गॾु आईन ऐं कानून जी बि तोहीन कई आहे। अॼु तोहीन अदालत जी दरख़्वास्त दाख़िल कराई वेंदी। पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गोहर चयो आहे त हुकूमती अमल खां पोइ को जवाबु नथो ठहे त असां हिन ऐवान में वेठल हुजूं। जेकॾहिं अदालती हुकुम ते अमल करणु मुश्किल आहे त पोइ जमहूरियत कीअं हलंदी। सलमान अकरम राजा चयो आहे त हुकूमत शिफ़ा अस्पताल ॿाहिरां हुजूम गॾु थियण वारो कूड़ो बयानो ठाहियो। हाणे फ़ैसिलो अवाम खे करणो आहे त हीउ केस अदालत में विढ़जे या रोडनि ते। कसम खणी चवां थो त बानी पीटीआई जी सिहत बिल्कुलु ठीकु आहे। सिहत जे मामले खे सियासत जे वर चाढ़ण न घुर्जे। दिफ़ा वारे वज़ीर ख्वाजा आसिफ़ जो क़ौमी असेंबलीअ में ख़िताब। ख्वाजा आसिफ़ चयो आहे त पीटीआई बानी जी अख बहितर थी रही आहे। ब्लड प्रेशर जी शिकायत आहे, उन लाइ बि इलाज जारी आहे। माज़ी में नवाज़ शरीफ़ जी सिहत ते मज़ाक उॾायो वियो। बानी पीटीआई पाण बि मज़ाक उॾायो, जंहिं जूं केतिरियूं ई वीडियोज़ मौजूदु आहिनि। हुननि खे हाणे अहसासु थियो हूंदो त बीमारी हिकु हक़ीक़त हूंदी आहे।
1: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।

0: ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फौजी ॿाहिरनि लाइ ख़ुसूसी रिआयत हूंदी। राब्ते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793।
1: अस्सलाम वालेकुम अदा।
2: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
1: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ही न तो, छा कजे?
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई अथई?
1: न अदा।
3: यार आजकल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
1: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
2: हाँ अदा, कारोबारी इश्तेहारात, आम इतला, मीलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
1: अदा जल्दी कर, मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
3: ऑफिस जी मेरापुर FM 94, नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालानी रोड, मेरापुर।
2: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
4: 0301-399-2836।
0: मोहम्मद उमेर गोरी 0319-1550-724।
5: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है, सुनते रहो जी FM 94।
6: खबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर 0300-338-5569।
7: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन, GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
8: ये

0: चलते हैं।
1: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन, मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, शानदार तालीमी इमारत, प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन, एयर कंडीशन का इनेकार, मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला, सरसब्ज बागीचा, बेहतरीन फर्नीचर, शानदार कंप्यूटर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स, ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत, केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जा, एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिले तहसीन नताइज, खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले, तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले, स्टडी टूर्स, अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें। मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन, मैनेजिंग डायरेक्टर मजहर स्कूल सिस्टम, 03000027234। निसार अहमद मेमन, प्रिंसिपल मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, 03013865453।
2: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
3: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तियाब आई।
2: हाँ यचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी।
3: राबते लाए प्रोपराइटर गुलाम नबी मुगल, 03003204372 आई 02424601000।
4: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेहरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम पी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट आई फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुम्मे छंछर आचर।

0: आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: वजीर आजम शहबाज शरीफ की सदारत हेठ इम्कानी बरसातन ए बोर के नुकसान बाबत इजलास। वजीर आजम के बोर मुतासर के माली फराम मदद फराम कर हिदायत। शहबाज शरीफ जो चवण है बोर दौरान फौत मानून के खानदान के माली मदद कई वे। बोर ए बरसातन में मुकम्मल तौर तबाह थियल घर के मालिकन के माली मदद फराम कई वे। वफाकी वजीर सेक्रेटरीज के मुतासर इलाक में वही बरसात के नुकसान जो जायजो वठण की हिदायत। वजीर आजम के ब्रीफिंग में बुधा वो तो मुल्क के मुतासर इलाक में बोर मुतासर के महफूज हंधन ना मुंतकिल पो वे। बरसातन इम्कानी बोर सबब एनडीएमए सूबाई डिस्टास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो टीमों मदद लाए तैयार हैं। सदर आसिफ अली जरदारी से मलेशिया के घरू वजीर सैफुद्दीन ऐवान सदर में मुलाकात। सदर पारा कानून लागू करण वाले इदारन सिक्योरिटी के शोबे में पाकिस्तान मलेशिया सहकार वधाण के जोर। दहशतगर्दी मंशात के रोकथाम इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ गरीब सहकार वधाण के तफाक। कराची के इलाके साइट एरिया में कपड़े की फैक्ट्री के लगल बाह से जब्तों आने की कोशिश जारी। 10 फायर टेंडर्स स्नॉर्कल ए 3 बाउजर बाह वसायण की कोशिश में रुधल। चीफ फायर ऑफिसर जो चवण है फैक्ट्री ताई पहुंचण जो रस्तो न होजन सबब दुखियाई पेश अची रही है। मुतासर फैक्ट्री समेत घर पासे वाले कंपनीज में भी अमले के बाहर कढ़ो वो है। पानी की खोड़ पूरी करण लाए वाटर टैंकर्स का मदद वरती पई वे। फैक्ट्री के बाह लगण जो कारण मालूम न थी सको। नौशेरो फेरोज में मेहरापुर भरसा गोदो शाख में मासूम बार बुड़ी वन एक लाश के हथ अची वो है। बुड़ी वेल चैन वरियन के अब्दुल रहमान आरइन जो लाश हथायो है। एक बार की गोल्हा जारी है। वारसन जो चवण है बारड़ा शाख भरसा रांद खेडंदे बुड़ी वन गोठान पारा पैंजी मदद पाण तहत एक बार की गोल्हा जारी है। गणी यासीन भरसा घोट साले ईसानी में जवाबदार जाल के फायरिंग करे कत्ल कर छो। जवाबदार शादी खान ईसानी पैंजी जाल रहीमा के बंदूक जा फायर करे कत्ल कर है। मकतूल औरत जो लाश रिकारवे लाए अस्पताल मुंतकिल कर है। पुलिस जवाबदार के गिरफ्तार न कर सकी।
0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
2: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चुपर एटमाट आई मा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कल रेट ते दस्तियाब है। सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वने थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जैर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राब्ते जे लाए आसिम हुसैन आराई 0307359212020।

0: ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फौजी ॿाहिरनि लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी। राब्ते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-54-4456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793।
1: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 0300-335-569।
2: अस्सलाम वालेकुम अदा।
3: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
2: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ही न तो, छा कजे?
3: अदा दुकान जी मशवरी कराई अथई?
2: न अदा।
0: यार आजकल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार अड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराने ते दिल्ली न थी चवे।
2: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
3: हाँ दा, कारोबारी इश्तेहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
2: अदा जल्दी कर, मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
0: ऑफिस जी मेरापुर FM 94, नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालानी रोड, मेरापुर।
3: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
4: 0301-399-2836।

0: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385569।
1: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

तुम्हारी उम्मीद माजिजों के बादशाह से है, तुम्हारी उम्मीद माजिजों के बादशाह से है, फिर क्यों परेशान हो, तुम्हारे पास तो अल्लाह है। सुनिए बिंदल तमाम खूबसूरत मासूमी सुने समातों के मुझे तरफा अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुली दुआ के समान गए शहादों की बारिश और खजानों के साथ दुआ है पल से पल तक आसे कल तक सुबह से शाम तक दिन से रात तक नींद से जागते समय से आसमान तक जिंदगी से मौत तक सांस से तर्द से खुशी तक दिल से दिल तक जिंदगी के पहले दिन से जिंदगी के आखिरी दिन तक अल्लाह ताला आप सबको हम सबको हमेशा हमेशा हमेशा अपनी रहमतों और बरकतों के साए में सलामत रखे। सो आमीन या रब्बल आलमीन। आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है जनाब सखर मोरो मिरपुर खास मटियारी सकरन मेहरापुर मादली और जनाब लाड़काना के लाइव स्टूडियो से आप सुन रहे हैं चलती का नाम वस्ती। बिल्कुल जी प्रोग्राम आप लोगों तक जनाब ये मौजूद है जनाब और इस प्रोग्राम में आप हमारे साथ मौजूद रहते हैं। प्रोग्राम में फन होगा, प्रोग्राम में बातें होगी, प्रोग्राम में एंटरटेनमेंट होता है और आपको सुनाया जाएगा अच्छा अच्छा मजेदार सा म्यूजिक कलेक्शन। इसी के साथ साथ अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो बताएंगे क्या तरीकेकार होने वाली है, लेकिन कहते ना कहते नहीं जल्दी किया है, अभी तो हमने स्टार्ट किया है, तो बिल्कुल अपना तारीफ करवाते हैं। सो लिसनर्स प्रोवाइजन टेक द मोस्ट ब्यूटीफुल फैंटास्टिक इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग कैरेक्टर यू आर जी एंड यू डीजे सिद्रा मुस्कान, नाम तो सुना ही होगा। सो बिल्कुल जी आपके सिद्रा आपके साथ मौजूद और यहाँ पर जितने भी प्यारे प्यारे लोग हमारे साथ मौजूद है सभी को कहते हैं वेलकम एंड खुशामदीद, आपकी मोहब्बत और समातों और चाहतों का बेहद वाला शुक्रिया। और जी सारी साथ जरा अपने हाल चाल बताते जाइए। सो डियर लिसनर्स अंत की हालत उन कैसे ही आपकी हालत है, उम्मीद है शदीद उनके बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, सबकुल मूड के साथ सबकुल प्रोग्राम का इंतजार करे होंगे। तो आपके जो इंतजार की घड़ियां थी वो खत्म हो चुकी है, फाइनली यहाँ पर हमने एंट्रियां मारी ली हैं। आपको पता ना जब हम एंट्रियां मारते हैं तो बहुत सारे लोगों के दिलों में घंटियां बजाते हैं तो यकीनन आपके दिलों में भी घंटियां बजाएंगे और आपको बताएंगे कि आपका हमारा साथ रहने वाला है ठीक अब से लेकर पूरे पूरे 3 बजे तक, यानी कि पूरे हमारे पास 2 घंटे मौजूद होने वाले हैं। 2 घंटों में हम करेंगे आप लोगों के साथ इनिशियली बातें, तो इनिशियली बातें करने के लिए आप भी जरा रेडी शेडी हो जाइए हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़ने के लिए। और साथ ही साथ अगर आप हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मौजूद रहने के क्या तरीके कार होंगे वो बताया जाएगा, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर बहुत से लोग हमारे साथ ऐसे मौजूद होते हैं जो कि अपने कामों के दौरान हमें सुन रहे होते हैं, बहुत से लोग ऐसे जिन्होंने अपने इस सारे काम कर लिए आने के फ्री होकर हमारे इंतजार कर रही थी, ऐसी बहुत सारी अंटियां अम्मियां खालाएं बाजियां और पापा की परियां जो हमें किचन में सुन रही होंगी यानी कि लंच बनाने के दौरान। सो भी अपने काम भी कीजिए, हमें भी सुनिए, आपको कहेंगे वेरी वाली गुड आफ्टरनून। साथ ही साथ अगर आप लोगों ने घर वालों के ताने सुनी लिए हैं तो जनाब अब जबरदस्ती गाने सुनने के लिए जरा रेडी हो जाइए, क्योंकि आपके बोरिंग लाइफ में भरेगी चटपटा मसाला और यहाँ पर ऐसा करते ही आकर से प्रोग्राम कर लेते हैं। सो बिल्कुल जी प्रोग्राम के आगाज में हम यहाँ पर आज एंजॉय करने वाले एक बहुत ही खूबसूरत सी नाच जो कि हमारी लिस्ट में मौजूद है और ये सिंधी नाच है जो कि हम आप लोगों के साथ सुनेंगे, बहुत ही खूबसूरत सी नाच है। सो इस नाच को सुनिए, उसके बाद हम जैसे ही मुखातिब आप लोगों से होते हैं तो बताते हैं कि आज के प्रोग्राम में आप लोगों के लिए क्या होने वाला है। बिल्कुल जी आप सुन रहे हैं चलती का नाम मस्ती, आपका हमारे साथ पूरे 3 बजे तक।

ओके जी वापस आ चुकी हूँ यहाँ पर प्रोग्राम सुन रहे हैं चलती का नाम मस्ती है। ओके सित्रा आपके साथ मौजूद है, मेरे साथ कौन है मुझे बताइए, और मुझे ये भी बताइए मेरी आवाज आप लोगों के हाथ सही आ रही है, क्योंकि मैं अगर एक दो दिन प्रोग्राम नहीं करती ना सिस्टम का ये अदा वाले जो है ना वो थोड़ा सा सिस्टम बिगाड़ देते। ओके जी सर यहाँ पर आप हमारे साथ मौजूद हैं, वेलकम के साथ साथ आप लोगों को आज के प्रोग्राम का जरा टॉपिक बताया जाए, क्योंकि आज के प्रोग्राम का टॉपिक होने वाला है वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग, तो बताते हैं ताकि आप लोग सवाल के ऊपर जरा आएं और बातें करें। तो आज के प्रोग्राम का जो सवाल होगा वो कुछ इस तरह से होगा कि आप फर्ज करेंगे आज भी अपनी जिंदगी में हम फर्ज ही करते बिल्कुल आज भी हम फेस करने वाले हैं, अगर आप रात को सोते हैं ठीक है, सुबह उठते हैं और आपको इस चीज का पता चलता है कि आप अपनी जिंदगी के 10 साल जो है ना वो पीछे चले गए हैं। हाँ जी आप अपनी जिंदगी के 10 साल पीछे चले गए हैं तो आप क्या करने वाले, क्योंकि हमें ये लगता है कि हमारी जिंदगी में जो है ना हमने बहुत सारा अपना टाइम जो है वो वेस्ट कर लिया है कुछ ऐसी चीजों के पीछे जो हमें नहीं करनी चाहिए थी, कुछ ऐसे काम जो हमें नहीं करने चाहिए थे। बिल्कुल वैसे अगर आप सुबह उठे आपको पता चले कि आप अपनी जिंदगी के 10 साल जो है वो पीछे चले गए हैं तो आप क्या करेंगे मुझे बताइए, जानना चाहती हूँ मैं सब कुछ जानना चाहती हूँ। और इसी के साथ साथ अगर आप हमारे साथ मौजूद रहना चाहते हैं जुड़ना चाहते हैं तो क्या करेंगे, अपना सेलफोन उठाइए, मोबाइल के राइट ऑप्शन में जाइए, टाइप कीजिए LRK सिंगल स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए पूरा मैसेज लिखिए और इसे सेंड कीजिए 8881 उसके अलावा अगर आप मुझे फेसबुक पर सुनना चाहते हैं तो जी लाड़काना FM 88.8 हमारा पेज है, आप जल्दी से आइए हमारा पेज आपको मिल जाएगा और वहां पर आपको हमारे प्रोग्राम की लाइव पोस्ट भी मिल जाएगी, तो उसे आप लाइक कीजिए कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, लाइक जरूर किया करें क्योंकि मुझे थोड़े लाइक्स अच्छे नहीं लगते हैं, तो लाइक कीजिए उसके बाद शेयर कीजिए देन आप कॉमेंट कीजिए। हाँ यो तरीको ज्वाइन करो तुम ओके प्रोग्राम जो हिस्सो बढ़ा वन मुख्य बधाई अगर तुम सुबह जो हो तो खबर पे अची वे तो 10 साल पानी जिंदगी जी अगते अची वे यानी पोते हले आया हो अगते ये पोते हले आया हो तो पोए तवां छा कना वे 10 साल जके तवां के लगे तो शायद मु विनाय छड्या है शायद मु वेस्ट करे छड्या है तो पोए तवां छा कना अगर ताकी वे 10 साल वापस मिली वने। ओके जी पोस्ट को लाइक और शेयर कीजिए और चाचा खालिद हमारे साथ, वालेकुम अस्सलाम बेटा सिद्धू हाउ आर यू हो फाइन, अचानक कहां गायब हो जाती है, मैं तो यहीं पर हूं, कहते ऐसा ना हो किसी दिन अचानक FM नेटवर्क से गायब हो जाएं और हम ढूंढते रह जाएं, हमारे पास तो आपका अता पता भी नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। अच्छा फहीम शेख हमारे साथ मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम अलैहिस्सलाम, अदा शाहल आहे अदा खुश आयो जफा, अरे गाना बुधायो भला सुख, अच्छा ठीक है मैं समझी बस, डेडिकेट यू एंड सर खालिद को, चले ठीक है। उनखा अलावा चाचे भी हदीका क्याने जी गाने जी फरमाइश कई ना थोड़ो पाने मैसेज के वराय सेंड करजो छोटा ही मुख लगे तो ये कमेंट मत ही भरी वेना। नजीर कोसो में सुन रहे बलूचिस्तान से भाई को वेलकम कहा जाता है और ऐसे ही आप नजीर भाई क्या कहते हैं, हमारा किरदार हमारी आदत का मजमुआ होता है, आप एक सोच का बीज बोएंगे तो अमल की फसल आगे उगेगी, एक अमल का बीज बोएंगे तो आदत की फसल आगे उगेगी, अगर आदत का बीज बोएंगे तो किरदार की फसल खाएंगे और अगर किरदार का बीज बोएंगे तो तकदीर की फसल उठेगी। क्या बात है जी क्या बात है, जबरदस्त हो गया ये तो, और आपको भी वेलकम कहा जाता है, सबको वेलकम कहा जाता है, टॉपिक को फॉलो कीजिए। यहाँ हुआ जाता है टाइम शॉर्ट कमिशन ब्रेक, उसके बाद जल्दी वापसी आप लोगों के पास आते हैं, आपने कहीं नहीं जाना बस यही हमारे साथ मौजूद रहिएगा क्योंकि मैं जरा यूं जाकर यूं वापस आती हूँ, सो स्टे ट्यून्ड स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग 88.8 FM आप सुन रहे हैं चलती का नाम मस्ती।

खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज। एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राबता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385 69।

0: वठनी पौंदी माहिरे अमराज नक कन गलो पुराणो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट ॿुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज़ फॉलिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज़ हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियूं ॿारनि में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-2196-851
1: ज़िंदगी गुज़ारियो एतमाद सां क़ुरान खे समझी ॿुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल क़ुरान रोज़ानो सुबुह 9:05 सिर्फ़ GFM 88 नेटवर्क ते ज़िंदगी गुज़ारियो एतमाद सां क़ुरान खे समझी ॿुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल क़ुरान रोज़ानो सुबुह 9:05 सिर्फ़ GFM 88 नेटवर्क

आप चंदा जानी बिल्कुल आ गई है, आप बताएं कैसी हैं, ठीक ठाक हैं, वेलकम कहते हैं। सादिया कहती है अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून, हैव अ नाइस डे, हाय आपी, आप कैसी हैं, होप यू आर फाइन एंड वेरी वेल, यस आई एम डूइंग वेल, आप बताएं कैसी हैं। और शौकत बलोच कहते हैं, सदरा तुम इतना बोलती हो, घर वाले तुम्हें रहने देते हैं घर में, अन्य तई तरह जन था बेजार आइन पर अच्छा था करे सगन उन नट कोई ऑप्शन भी ना है सो बर्दाश्त करनो पंदो यदि तमा के गडो गानो बुधराया थी डाडो बलो गानो तव इन के एंजॉय कयो मा थोड़ो इते आया कारी कुन थी वणा छोटो सा निकरे

मैं तलाश आता हूँ, पर सुन के बहुत अच्छा लगा. बिल्कुल जी, आप हमारे साथ मौजूद हैं, पोस्ट को जरा लाइक और शेयर करते जाइए और टॉपिक को भी फॉलो कीजिए.

अच्छा गर्दे गुल कहती है माशाल्लाह माशाल्लाह सो क्यूट, आज ही चंदा को नजर ना लगे किसी की, दुआ है कि मेरी चंदा जानी हमेशा खुश रहे। थैंक यू सो मच प्यारी जान, आप भी खुश रहे। और शौकत बलोच लगते हैं कि जिंदगी की हकीकत बस इतनी सी है, जो बातें दिल तोड़ती है वही तो आंखें खोलती है। डिसो डिसो डिसो या गाल सही मामा गोरे।

हम आगे आ जाएंगे और फिर वही सो जाएंगे. यू पॉसिबल नो दो नहीं तागाल के समझो. अखलाक भाई कहते हैं कसम से. हाँ ॾिसो ॾिसो तव्हांखे पछताव आहे माना पंहिंजे ज़िंदगी में. हुजणु घुरिजे हुजणु घुरिजे. अच्छा अदा चए थो सची ॿुधायो राति को मूवी ॾिसी? न न मूवी त कोन ॾिठी. सोचा नी छा ॾिठो. ड्रामो बि कोन ॾिठो. कुझु बि न. ईअं बसि मुंहिंजे दिमाग़ में अहिड़ियूं चीज़ूं अची वेंदियूं आहिनि. तव्हां ख़बर आहे थोरो क्रेक दिमाग़.

मुझे के असा बुधोआ ओके ॾाढो भलो गानो ॿुधी करे मज़ो आयो ही वारो ट्रैक असांजे लिस्ट में आहे सो असां हिन खे बि ॿुधंदासीं अली सफ़र ऐं आयमा देग जी आवाज़ में सॉरी आयमा बेग जी आवाज़ में ॾाढो वैपी गानो आहे ऐं तव्हां असां सां गॾु मौजूदु आहियो पोस्ट खे लाइक शेयर कयो पिया कोन कयो था

गई थी चाचा खालिद के दिन 10 साल पीछे जाऊंगा तो आपके साथ को होस्ट बन जाऊंगा और मेरे पास पता क्यों नहीं हो, आपके पास तो क्या किसी के पास भी ना हो। और क्या कहते हैं फहीम ब्रेक, हाँ ठीक है टॉपिक पो मास CSSG तैयारी कंदम, वाह वाह वाह। साध्या कहती आप ही सॉन्ग रिक्वेस्ट है। अच्छा मेरे साथ ही मिली हो गानो तो हलाइना तवाज लाए ठीक है। और रिहाना खान बकर सिमर सद मौजूद हैं, आपको वेलकम कहते हैं वालेकुम अस्सलाम के साथ।

थे क्या बात है, गाना आपने इंजॉय किया, बहुत ही खूबसूरत सा गाना जो कि हमने यहाँ पर सुना, और इसी के साथ साथ आप हमारे साथ मौजूद हैं, पोस्ट को लाइक और शेयर करते जा रहे हैं, और साथ ही साथ आप लोगों के साथ बातें जो कि भाई जान हम करेंगे, लेकिन बातों के सिलसिले को जारी और सारी रखने के लिए एक और चीज भी होती है कि आप लोग भी हमारे साथ मौजूद रहने चाहिए। तो प्रोग्राम में अगर आप हमारे साथ मौजूद है तो बताइए कौन कौन हमारे साथ है, कहाँ कहाँ से आप हमें सुन रहे हैं, और उसके अलावा पोस्ट को लाइक कर रहे हैं नहीं ये भी बताइए और क्या ही बताएंगे, टॉपिक को फॉलो कीजिए।

क्या बात है, बटर जवानी बहुत ही ब्यूटीफुल सा गाना एंजॉय करे और साथ ही साथ यहाँ पर आप हमारे साथ मौजूद है। अच्छा तो ये क्या कह रहे हैं, आज इंडिया के गाने चला रही है ना बाबा, ये सारे पाकिस्तानी गाना चाहते हो तो अगर सादे के लिए ये पोएट्री है, तकाजाए इश्क है मेरी आंखों की मस्ती का, खुला तो दीदार आपका, बंद करूं तो तस्वीर आपकी, वाह वाह वाह वाह डैडी भली शायरी हो। चाचा खालिद लिखते हैं कि उलझा के रख दिया है इस कश्मकश ने मुझको, वो फिर से आ बसी है मुझ में या मैं खो गया हूँ उसमें, वाह वाह वाह वाह। अच्छा हैप्पी के दिन आरजे, आप इतने दिनों से 1 बजे वाला प्रोग्राम क्यों नहीं कर रही थी, मैं आपका और आपके शो का इंतजार करती थी पर आपका शो रेडियो पर नहीं चल रहा था और इतने दिन से आपका प्रोग्राम में भी शामिल नहीं हो पा रही थी, आपका शो तो सुनती थी पर मैसेज नहीं करती थी, वो इसलिए कि मेरे पास मोबाइल नहीं था इसीलिए आपको मैसेज नहीं करती थी, सॉरी। कोई बात नहीं जी, कोई बात नहीं, वैसे शायद मैंने कल परसों ही नहीं किया था 1 बजे वाला प्रोग्राम, बाकी तो मैं करती हूँ। ओके जी, अब्दुल गफार रन हमारे साथ हैं भाई, वालेकुम अस्सलाम, सलामत रहें, आप भी खुश रहें और हमारे साथ रहें। सादे के दिन टॉपिक में 10 साल पीछे जाऊं तो मैं मैट्रिक के एग्जाम दे रही होती। अच्छा मनाया गाल ये मेरी इतनी बुरी आदत है ना कसम से, जो मैं बात बात पे बोलती हूँ, अच्छा मनाया गाल

ओके जी, हमदुल्ला मला खेल हमारे साथ कहते हैं, फर्ज और वाजिब इबादतों के बाद सबसे खूबसूरत इबादत दूसरों के दर्द को महसूस करना और मुरझाए हुए चेहरों पर मुस्कुराहट लाना है। बिल्कुल जी, कितनी अच्छी आपने बात शेयर कर दी। वालेकुम अस्सलाम कहते हैं, मैं हूँ हमदुल्ला मला खेल फ्रॉम कोयटा, वेलकम टू शो। वेलकम कहते हैं प्यारे भाई आपको भी। बिल्कुल, आप हमारे साथ मौजूद रहिए, प्रोग्राम सुनते रहिए और हमारा साथ दीजिए, क्योंकि आपका हमारा साथ पूरे पूरे पूरे 3 बजे तक का। सो यहाँ पर टाइम हो जाता है, जरा हम न्यूज ब्रेक की जानिब जाएंगे, उसके बाद शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक होने वाली, वापसी आपके पास ही आएंगे, कहाँ जाएंगे आपको छोड़कर। तो आप भी कहीं नहीं, जरा हमारे साथ मौजूद रहिएगा, मैं जरा यूं जाकर यूं वापस आती हूँ। सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग जी एफ एम 88.8 पर। प्रोग्राम चलते का नाम मस्ती।

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: पाकिस्तान ऐं मलेशिया जो दहशतगर्दी मंशियात जे रोकथाम ऐं इंसानी स्मगलिंग ख़िलाफ़ गॾियल सहकार वधाइण ते ज़ोर। सदर आसिफ अली ज़रदारी सां मलेशिया जे घरू वज़ीर सैफुद्दीन बिन इस्माइल जी मुलाक़ात। सिक्योरिटी जे शोबे में सहकार वधाइण ते बि ज़ोर भरियो वियो। सदर आसिफ अली ज़रदारी पाकिस्तान शयुनि जे मलेशिया जे मार्केट्स ताईं पहुच ते ज़ोर भरींदे चयो आहे त मलेशिया में चांवर, पटाटनि, कणक ऐं जानवरनि जे ख़ुराक जी तलब मौजूदु आहे। घरू वज़ीर मोहसिन नक़वी बि मुलाक़ात में मौजूदु हो। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ जो बरसातनि ऐं ॿोॾि दौरान फ़ौत थी वियलनि ख़ानदाननि जी मदद ऐं तबाह थी वियल घरनि जी ॿीहर तामीर जो हुकुम इम्कानी। बरसातनि ऐं ॿोॾि जे नुक़सान बाबति थियल इजलास में वज़ीर आज़म पारां ॿोॾि मुतासिर इलाइक़नि में बिजली ऐं रोड रस्तनि जी बहालीअ लाइ बि क़दम खणण जी हिदायत कई। वज़ीर आज़म खे ब्रीफिंग में ॿुधायो वियो त मुल्क जे मुतासिर इलाइक़नि मां ॿोॾि मुतासिरनि खे महफ़ूज़ हंधनि ॾांहुं मुंतक़िल कयो पियो वञे। वधीक बरसातनि ऐं इम्कानी ॿोॾि सबबि NDMA ऐं सूबाई मैनेजमेंट अथॉरिटीअ जूं टीमूं मदद लाइ तयारु आहिनि। प्राइमरी उस्तादनि जे सर्विस स्ट्रक्चर समेत ॿियनि मुतालबनि जी मञता लाइ पेटे अलिफ जे सर ते मुख़्तलिफ़ शहरनि में एहतजाजी मुज़ाहिरा। नौशेरो फ़िरोज़, दादू, कंदकोट, नवाबशाह, कुम, ब्रियासती ऐं परवाकिल ॿियनि शहरनि में एहतजाज कयो वियो। अॻवाननि जो चवणु आहे त जाइज़ मुतालबा तस्लीम न कया विया त एहतजाज जो दायरो वधायो वेंदो। मेहरापुर भरिसां गोधो शाख में ॿ मासूम ॿार ॿुॾी विया आहिनि। हिकु जो लाश हथायो आहे, ॿिए जी ॻोल्हा जारी आहे। ॿुॾी वियल चइनि वरनि जे अब्दुल रहमान आराई जो लाश हथायो आहे। सत वरनि जे अरहम आराई जी ॻोल्हा जारी आहे। वारसनि जो चवणु आहे त ॿारड़ा शाख भरिसां रांदि खेॾंदे ॿुॾी विया आहिनि। ॻोठाणनि पारां पंहिंजी मदद पाण तहत ॿुॾी वियल ॿारड़े जी ॻोल्हा जारी आहे। गढ़ी यासीन भरिसां ॻोठु साले ईसाणीअ में मुड़ुस हथां ज़ाल क़तल। जवाबदार शादी ख़ान ईसाणी पंहिंजी ज़ाल रहीमा खे बंदूक जा फायर करे क़तल कयो। मक़तूल औरत जो लाश जल्दी कार्रवाई लाइ अस्पताल मुंतकिल। पुलिस जवाबदार खे गिरफ़्तार न करे सघी। जेकमाबाद पुलिस अहलकार जो घर मां गोलियूं लॻल लाश हथायो आहे। ADC कालोनी जे घर मां अहलकार महबूब जखराणी जो लाश मिलियो आहे। इतलाउ ते पुलिस पहुची लाश गिरफ़्तार मुंतकिल करे छॾियो। वारसनि जो चवणु आहे त अहलकार सुबुह जो खीर वठण लाइ उथंदो आहे। खीर वारे ॿुधायो आहे त अॼु न उथियो आहे, जांच लाइ वियासीं त संदसि लाश मिलियो।
0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।

0: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद 9।
1: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर, और मेहराबपुर की आवाज GAFM 94।

बिल्कुल इहो सोचींदा आहिनि त असां पंहिंजी ज़िंदगी खे वेस्ट करे छॾियो आहे. हाणे अगरि असांखे टाइम मिले, चांस मिले ज़िंदगी में पोइ ते मोटण जो, त असां हीउ कमु कंदासीं, असां हीउ कमु कंदासीं. त खोड़ माण्हू उहा कहिड़ा हूंदा आहिनि जेके बिल्कुलु ईअं चवंदा आहिनि त असांखे अगरि चांस मिली वञे, या फिर तॾहिं चवंदा आहिनि त वक़्त जी क़दुरु कयो, वक़्तु जेका कॾहिं बि वापसि न आहे मोटी ईंदो. त उहा ई ॻाल्हि आहे, तव्हां मूंखे ॿुधायो अगरि तव्हां सां ईअं थी वञे त पोइ तव्हां छा करण वारा आहियो. उन खां अलावा पोस्ट खे वधि खां वधि लाइक ऐं शेयर कंदा हलो, ऐं तव्हां सां गॾु मौजूदु आहे बिल्कुलु तव्हांजा फीडबैक्स आहिनि. पैनल ते बि खोड़ सारा मैसेजेस जमा थी विया आहिनि, अगरि पढ़िया वञनि त सुठी ॻाल्हि हूंदी. अच्छा, सो पैनल ते मूंखे सभ खां पहिरियों जेको मैसेज मिलियो आहे उहो मिलियो आहे कश्मोर से अखलाक बलोच. हाय सिदरा, हाय चयो अखलाक भाई, बिल्कुलु तव्हांजो गानो ॿुधोसीं, तव्हांखे मज़ो आयो हूंदो. और इरम कहती है नहीं नहीं दिलबर, आप ही आपकी आवाज़ सही आ रही है. ओके, ये मौजूद है हमारे साथ हक मौजूद मुलायम इस्लाम अदर बदीन खान, डॉक्टर हसीना सुमरो साहिबा, एंड डॉक्टर कैप्टन मारिया शायद मारिया सुमरो है. ओके जी, आपने लिखा है गाना, सो चलिए अच्छा ये गाने के बोल हैं. सही सही, मां कोशिश कयां थी तव्हांजी पसंद जो गानो हलाईंदासीं. और उनखां अलावा वालेकुम असलाम इन मोलल इस्लाम अदर, छा हाल आहिनि, उमेद त खुश सदा खुश हूंदा, आमीन आमीन. कसीदा ॿुधायो अब्दुल जब्बार मरी दरिया खान मरी हमारे साथ. भाई जान कसीदा हम प्रोग्राम की स्टार्टिंग में लगाते हैं, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ. और ये हमारे साथ हैं जी डॉक्टर हसीना, दोबारा से कहती हैं भेण असांखे तव्हांजो जेको मैसेज हूंदो आहे न, थोरो थोरो मूंखे सम्झ में न ईंदो अलाए छा लिखंदा आहियो. त तव्हां मैसेज जेको आहे सिंधी में लिखी करे शेयर कंदा आहियो, पैनल ते अगरि सिंधी में थोरो मैसेज ईंदो आहे न त वैसे ई थोरो हेॾे होॾे थी वेंदो आहे. सो थैंक यू सो मच, तव्हां सां गॾु मौजूदु आहे, तव्हांजी मोहबतूं आहिनि. और ये वालेकुम असलाम फुलजी स्टेशन खां फौजी पठान खान खोसो है सदरा. अच्छा गानो लिखियो अथव डेरी के डॉक्टर हसीना सुमरो साहिबा, डॉक्टर कैप्टन मरियम कोरे जो साहिबा जे नाले. चले ठीक है, मां कोशिश कयां थी तव्हां भाइरनि जूं फरमाइशूं हलाईंदासीं. सुल्तानपुर खां अब्दुल गनी जूने जो हमारे साथी, वालेकुम असलाम, कहते सिदरा मुस्कान साहिबा, शो बेस्ट है जवाब, गेप को पूरा करने के लिए 10 साल नींद ही नहीं करूंगा, बैलेंस बराबर हो जाएगा. 10 साल तां कीअं न सुम्हंदा बाबा, कीअं न सुम्हंदा. इमेजिन कयो अगरि हिकड़ी राति तव्हां निंड न आयो कंदा. कुझु माण्हू अहिड़ा हूंदा आहिनि जेके, अच्छा निंड तां मूंखे हिकड़ी ॻाल्हि यादि आई, कुझु टाइम पहिरियां न हिकड़ी न्यूज़ वायरल थी हुई त हिकिड़ो छोकिरो अकेलो रहंदो हुयो, यानी की पंहिंजे फ्लेट ते, त टे ॾींहं गुज़री विया हुन जे अंदरि, त हुनखे वेंदे माण्हू ॾिठो, ठीकु आहे, लेकिन टे ॾींहं गुज़रिया हुनखे कंहिं ॿाहिरि ईंदे न ॾिठो, हुन जा जेके पड़ोसी हुया जेके, टे ॾींहं गुज़रिया हुनखे कंहिं ॿाहिरि ईंदे न.

नंढ न थी अचो, निंड खां कयो ज़रूरी आहे। निंड असांजी बॉडी लाइ तमामु घणी ज़रूरी आहे। अच्छा, हिन तव्हां हिकिड़ी ॿी बि ॻाल्हि मूंखे यादि अची वई, उहा थोरी देरि खां पोइ ॿुधाईंदी न त चवंदा हाणे सभु सिधरा ॻाल्हियूं यादि अचनि थियूं। मूंखे इलाही ॻाल्हियूं यादि ईंदियूं पर हिकु अलॻि ॻाल्हि तव्हांखे ॿुधाईंदी न आहियां। सो हीउ गानो आहे जेको तव्हांखे ॿुधाईंदासीं, तव्हां पोस्ट खे लाइक ऐं शेयर कयो। बिल्कुल जी, आप हमारे साथ मौजूद है प्रोग्राम है चलती का नाम मस्ती।

क्या बात है, बहुत ही प्यारा सा गाना यहाँ पर आप एंजॉय कर रहे हो। इसी के साथ साथ आप हमारे साथ मौजूद है, आपका साथ है क्या बात है। अच्छा, सो हमारे साथ यहाँ पर मोहम्मद अमीन, हमारे साथ ही अमीन फुलपोटो खैरापुर मीरज से कहते वीआईपी प्रोग्राम, थैंक यू वेरी मच, आपको वेलकम कहा जाता है। और चाचू लिखे तो घर वाले ना रहने दें तो चाचा के घर के दरवाजे 24 घंटे खुले हुए, 24 कला का पांच घर जो दरवाजा ना खुली शरीर, इट्स नॉट सेफ, बंद रखो दरवाजों। अच्छा, उनका अलावा संजय जी पाल हमारे साथ मौजूद है, मैं ठीक हूँ, आप बताएं कैसे हैं, ठीक ठाक है। प्रेमचंद भाई वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, सुमार्टू गोपांग हमारे साथ ही, हाय वालेकुम अस्सलाम, मैं भी आ गया फ्रॉम कंपर सिटी। ओके, कहते हैं प्लीज प्ले सॉन्ग, हा हा तोने मुंजी दिल यो माडे साथ ही मिलियो तो हलाइन तो तांज लाए गानो। और हैप्पी कहती है आरजे पोस्ट को सब इसलिए लाइक कमेंट और शेयर करते हैं क्योंकि आपसे डरते ही अगर हम लाइक नहीं करेंगे तो आप हमें कुटकी देंगे, बिल्कुल यही गाल था। लाइक और शेयर लाजमी किया करे। माँ तरतीब वारो माण्हू आहे, मां पाण चवंदी आहियां इंसान हर हिकु इंसान जेको आहे न तरतीब सां हले, उन जेको कमु आहे उहो सभु कमु करे। सो इहो तव्हांजो कमु आहे, तव्हां सभु कयो। अच्छा, साकिब अली पवर हमारे साथी, वालेकुम अस्सलाम। आइए मारिया, मारिया हमारे साथी, वालेकुम अस्सलाम मारिया, आपको वेलकम। कहते कहते आप इतने दिन कहाँ चली जाती हैं, रोज यहाँ बना। अच्छा, रोज आया करे ना प्लीज, मुझे आपकी आदत लग गई, आपकी आवाज नहीं सुनती तो मुझे सुकून नहीं मिलता। अरे भाई, मैं रोज ही तो आती हूँ, बढ़िया करे ना आय सजा थी पे, वैसे 5 बजे वालों प्रोग्राम तो मैं डेली करनी है। हाँ, वैसे कल तो जुम्मा था, ताणी छा मतलब ताजो मां मोकल भी न कयां।

दाड़ो भलो गानो और किशोर भाई कहते हैं टॉपिक, अगर मैं 10 साल पीछे चला गया तो मैं 10 साल छोटा भी तो हो जाऊंगा ना, ये तो अच्छी बात हुई ना, तरी तो चवा मथी नंढड़ा भी थे नंढड़ा भी कुराड़ा वाली जवान थी ना।

एतिरो तव्हां पाण खे मतिलबु हीअ न कयो न त अॻिलो माण्हू कोई बि अहिड़े क़िस्म जो लव्स चए थो डायरेक्ट हुनजो ज़हन तव्हांजे तरफ़ हलियो वञे ईअं न कयो बाबा ईअं न कयो हे पई की तीअं आरजी अगरि 10 साल पीछे गई तो मैं 5 या 6 साल की होती क्योंकि अभी मेरी उमर 15 साल है तो अगर मैं 10 साल पीछे चली जाती तो छोटी होती खेल रही होती घूम रही होती भई आता सुठी ॻाल्हि आहे न हर को चवंदो असांखे पंहिंजो बचपन मिले बचपन मिले तव्हांखे मिले थो त तव्हां वठो न था इहो छा आहे इहो छा आहे

जी असल गाल बिल्कुल याद है मुझे को ताम बुधू था अच्छा बिलाल अली हमारे साथ मौजूद है वालेकुम अस्सलाम काफी दिनों के बाद हमारे प्रोग्राम में शामिल रहे हैं बहुत शुक्रिया जी और चाचा जिंदगी में कुछ चीजें जो होती ना वो अच्छे के लिए होती हैं वक्त गुजरता है तो आपको इन चीजों का अंदाजा हो चुका होगा अगर मुझे ये लगता है कि जो लोग अपनी जिंदगी से खुश नहीं होती अगर वो यही सोच अपनी जिंदगी के अंदर अपना लेना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है तो वो अपनी जिंदगी में खुश रह सकते हैं तो ये फार्मूला आप ट्राई करके देखिएगा अच्छा दर्दी दिल कहती है तुम एक दिन नहीं आते तो मुझे लगता है 7 या 8 दिनों से शो नहीं सुना अच्छा अब्दुल्ला अली हमारे साथ है कहते हैं सिद्रा की मुस्कान बड़ी खतरनाक है जहाँ बैठ जाए वहाँ हंसी की दुकान है ओके जी अब्दुल्ला अली हमारे साथ है और अब्दुल्ला आपको वेलकम कहते हैं अगर सादिया को हमारा प्रोग्राम पसंद आ रहा है बहुत शुक्रिया सादिया एंजॉय कीजिए हाँ जी क्या ही बात है पोस्ट को लाइक और शेयर करते जा रहे हो इसी के साथ साथ आप लोगों के साथ जी गपशप है और गपशप ये जो है ना पूरी पूरी 3 बजे तक जारी और सारी रहेगी इरम कहती है हाय अल्लाह आप ही हाँ बस क्या ही कर सकते हैं अब्दुल जब्बार मरी हमारे साथ यदि सिद्रा ओपो कयाला गलतिन के सुधारे इंदर से वाह वाह वाह वाह बिल्कुल या सोच हो जन गुर्जे और रसूलाबाद से अब्दुल सिंह शंबानी भाई हमारे साथ अदी अच्छो असा के 10 साल पोते धिको देन थी वरी एतरो पंद करे केर इंदो अज जते पोता आयूं यही पोचंदा जी हाणे पोता आयूं टेंशन चोता वेठो

0: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चौक पर एतमाद, अम्बा अख्तियार 3S डीलर, आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल, कंपनीया जे मुकरर कर रेट दे दस्तियाब आहे, सर्विस सेंटर, एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर, सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे, होंडा कंपनीया जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स, खुसूसी रियायत ते मौजूद, आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो। कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिन्हें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर, फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट, कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी, आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर, राप्ति जिलाई, आसिम हुसैन आराई, 03073592120।
1: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामूं वधण बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेहरापुर, कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन MA DHMS सिंध RHMP इस्लामाबाद, होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह, हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर सूमर से सुबह 10 शाम 5 बजे तीन मरीज।

क्या बात है, बहुत ही प्यारा सा गाना। मैं वैसे गाना सुन रही थी, इंजॉय कर रही थी, अच्छा गाना था। उन खां अलावा जेको आज सो तमासे सगर मौजूद आयो प्रोग्राम सुन रहे हैं, चलती कना मस्ती आगे से दराव के साथ मौजूद है। मेरे साथ कौन है मुझे बताते जा रहे हैं, शामले प्रोग्राम होते जा रहे हैं और भाई साहब हमारे साथ यहां पर मौजूद है, सखर मोरो मेरपुर खास मटियारी सकरण मेहरापुर मादली और लाड़काना के लाइव स्टूडियो से मैं आपके साथ मौजूद हूँ। तो हम आ चुके हैं ना प्रोग्राम के लास्ट लिंक में, इतना जल्दी टाइम गुजर जाता है पता ही नहीं चलता। मुझे लगा अभी मतलब एक लिंक खत्म हुआ है और ये लास्ट लिंक आ गया। चले जी, सो आपको वेलकम कहते हैं। और इसके अलावा टॉपिक यही पूछा आप लोगों से कि आप मुझे बताएं, अगर आप फर्ज कर लीजिए कि आप सुबह उठते हैं जागते हैं, आपको मालूम पड़ता है कि आप अपनी जिंदगी के 10 साल जो है वो पीछे चले गए हैं, तो आप क्या करेंगे? क्योंकि कुछ लोग अपनी जिंदगी में बहुत मेहनत करके आगे बढ़ते हैं, लेकिन उन्हें अगर ये पता चल जाए कि 10 साल अपनी जिंदगी के जो है वो पीछे चले गए हैं और उनको दोबारा से सारी मेहनत करनी पड़ेगी, दोबारा से सब कुछ करना पड़ेगा, मतलब यकीन जाने कि उनका जो रिएक्शन होगा वो थोड़ा अच्छा नहीं होगा। लेकिन आप अपना बताएं। खैर, और इसी के साथ साथ यहाँ पर ये गाना हमने एंजॉय किया जो कि तकरीबन खत्म ही हो चुका है। दूसरा गाना हमारी लिस्ट में है जो कि हम जाहिर सी बातें एंजॉय करेंगे। और सजाद भासी हमारे साथ मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम फ्रॉम मातली से आप हमारा शो सुन रहे हैं, थैंक यू जी, थैंक यू। ये तोड़ फोड़ मेरी चलती रहती है।

ओके जी साधिया साधिया थैंक यू सो मच आप हमारे साथ हैं और समाटो गोपा के लिए सिद्धा नाराजगी छ कमेंट शामिल नथा कर जेके मथे होया उस पढ़िया है अगर तवहा न बुधा है तब अपन मुझे कीड़ी गलती है वासे भाई हमारे साथ मौजूद है मुझे प्यारी भेण कीड़ा हाल है खुश आयो सब अच्छा चंगी भली यस ता पांजो बुधायो फहीम कहते असां त टे बजे खां पोइ सुम्हण जा आदि थी विया आहियूं अच्छा टे बजे खां पोइ सही सही सही और ये वकील अहमद सिंधी हमारे साथ हैं विक्यू खास के लिए ओके फ्रॉम सैयद गुलाम हैदर शाह से बाजी आप कैसी हैं आपका शो बहुत अच्छा है बाजी माय फ्रेंड जमील खास के लिए और मुरीद बस इतना ही मैसेज है सो थैंक यू सो मच आप हमारे साथ हैं

0: अरे समाटो गोपा कहते सलाम टू शाद कॉलोनी कंबर से सनाउला एजाज हुसैन गोपांग इनायतुल्ला गोपांग गुल हसन गोपांग किफायतुल्ला गोपांग हुसैन अली गोपांग रहमान अली गोपांग चलें जी सबको वेलकम कहते हैं. उनके अलावा आशीष सगट मौजूद आए दर्दे दिल कहती है मैं तो जल्दी सोती हूँ और जल्दी उठ जाती हूँ बहुत अच्छा करती हूँ जल्दी सुमण वारा जल्दी उठण वारा मानू डाटा भला हूँ अच्छा. उनके अलावा नन चाचा तवा की नो यस यो कोई बो हो वासो भाई थे अदी सिद्रा देर में देर असा भी प्रोग्राम में पहुंची वया सी. थैंक यू सो मच प्यारा सुना भाव
1: मुझी पसंद जो ख्याल रखे मुझी हुसैन ते गीत लिखे.
0: हां फहीम बिल्कुल गाल के घुमाए फिराए कंदा आयो अगलो मानो समझे ना.

किशोर भागे दे अदा तू अगर अज रात सुम्ही सुबुह तुझी अख खुले तू 80 साल जी कुराड़ी थी वही आही हिकड़ो भी दंद नाहे पो तुझी फीलिंग केड़ी होंदी सच बुधाया त सुठो लगंदो छो छो त पो मुखे ओ टाइम लंदो बस मुखे सिर्फ रिलैक्स करनो होंदो कम कार जिंदगी जी भाग दौड़ या सब जको आ न वो परते हली वेंदी सो सही आ ऑप्शन सुठो आ।

गुलाम फरीद बलोच हमारे साथ है, मोहब्बत करने वाले अपनी पसंदीदा इंसान की जस्तजू में ही मर जाते हैं। अच्छा अच्छा सही सही। और हैप्पी कहती है नहीं ऐसा नहीं है, मैं तो अपने बचपन में जाना चाहती हूँ पर ये तो नामुमकिन है। आप तो जानती हैं अगर आप कहेंगी तो मैं बचपन में चली जाऊंगी। ठीक है इतना मासूम आयो अल्लाह ता सब। हैप्पी कहती है मैं आपके लिए कुछ भी कर सकती हूँ, ये न कर बाबा ये न कर, देसो सियाणी थी। हाँ थोड़ी देर सा कमेंट्स पहुंचन था, पंद पया कन पंद करे अचन जडे पहुंचन कराची खा लाड़कानो, थोड़ो चंगड़ो सफर था है न पाण समझी सगो था। सो ही गानो हलायो आए न के भी बुदंदा।

0: वाह साई वाह, वाह साई वाह, हलो गानो बदतासी अच्छा ही पैनल ते कुछ मैसेजेस आहिन अलाके थी सजा समझो में गाल न दिए छे अच्छा एरम थैंक यू आप हमारे साथ ही और मकसूद बना के थे मेरा पर से मुस्कान मुझे मास्टर मंसूर का गाना सुनाना बिस्मिलायूं बिस्मिलायूं अच्छा यो गानो आज चली मां कोशिश क्या थी अगर न हलियो सगो न हलियो तो वरी पंजी बजे वाले प्रोग्राम में हलाए वठना सी ये मौजूद है आपके सी सिद्रा जी सलाम दीजिएगा रिजवान साहब कहां गायब है 78 मोरी से राजा हमीचंद किशोर कुमार हीरा भाई अकबर कुंभर और राधो महर नवाब ड्राइवर प्लीज प्ले ममताज मोलाई तू मनी मनी असा यार चले दिसा थी हलायूं था यो गानो वैसे रिजवान साहब तो अपने कामों में मसरूफ है वो नहीं करेंगे भाई प्रोग्राम भले तां केरो भी चौस हम नहीं करेंगे मुझे बिल्कुल ये लगता है
1: भी दो साए के भी दुखे मोड़ते काफर थ्या जे गदार थ्या
0: अच्छा ये मौजूद ही अदी सिद्रा असांजा मैसेज कोन पया पढ़ो कावड़ा छा अब्दुल जबार न बाबा तां जो मैसेज पढ़ी छड़ियो मु और ये मौजूद ही वालेकुम अस्सलाम आपका शो वेरी नाइस है गोठ मोहम्मद तैयब थेबू का हबीबुल्ला थेबू हमारे साथ है वेलकम जी वेलकम और बाजी सिद्रा क्या हाल है आपके शो वेरी नाइस है मीरपुर खास का उम्मीद अली उतरादी है सलाम चौवन कुमार खालिद जुड़े जो अदील अबड़ो रांझन कोरी इकबाल खालिक लाशारी एंड यू सो वालेकुम अस्सलाम सबकी जानिब से ये कहते हैं बाजी सिद्रा आई लाइक योर वॉइस इज गुड ज्वेलरी से उम्मीद अली उत्तरादी सलाम किशोर अजीज कुमार अजीज सुमर सोलंगी अंकल गफूर और आकिब शकूर लाशारी एंड यू प्ले शमन हेलो केडा मानू याद अव असा का कदे कदे पांजो नालो ही विसरी वेंदो
1: शरत मनामा जी अचवे तू ती कयामा
0: अच्छा फुलजी स्टेशन का फौजी पठान खान घोसो भाई तां जो मोहब्बत हुआ तां से प्रोग्राम बुधो पया अच्छा खालिद असां दे पैनल ते मौजूद आए मजाक करता हूं आपसे अपना समझ के नहीं नहीं बिल्कुल मैं भी आपसे मजाक करती हूं सी कोई बात नहीं है पांजा पान में आयो टेंशन न वठंदा कयो मुजी टेंशन न कंदा कयो और हकु मौजूद मौला इस्लाम अदत बदीन खान डॉक्टर हसीना सुमरो से सगन मौजूद आए डॉक्टर साहिबा तां जो मोहब्बत हुआ तां ओ हीडा सारा मैसेज करी छड्या है गोट मोहम्मद तैयब थेबू का हबीबुल्लाह थेबू भा तां जो भी मोहब्बत हुआ तां भी वराय वराय मैसेज शेयर करी छड्या है

अच्छा दर्दें तो लगती हैं कि कुछ चीजों से मुझे नफरत है, जैसे कि नजरअंदाज करने के बाद दी गई तवज्जो से, सच जाने के बावजूद झूठ सुनने से, दुख के बाद दी गई खुशी से, दर्द देने के बाद माफी मांगने से, और तकलीफ के बाद दी गई मोहब्बत से। वाकई यो तोखे न सिर्फ सबनीन के नजरों का नफरत आई। बहुत अच्छा मैसेज, थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ मौजूद। और विकियो भाई आपका भी बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ हैं। बख्तली सियाल भाई हमें सुन रहे हैं, थैंक यू। राशिद खोड़ो हमें सुन रहे हैं, कहते आज अच्छे मूड में है, वाई मुझे भलो मूड भी तांगे भला नथो वणे जा वरी वाई चवण पहुंची वे आयो वाई छो बताया तांगे मा कौन थिंद से तो खाधार मा कौन छडे वी दो। अच्छा अली मोहम्मद भाई हेलो हेलो मोड़ते काफर थ्या। हाँ हैप्पी, बिल्कुल सही करी, टाइम का पता ही नहीं चलता, इतना जल्दी गुजर जाता है। वेरी वेरी वेरी वेरी वेरी कह रहा सगड़ा।

अच्छा हाँ, तोड़ फोड़ की टेंशन नहीं है, बाकी इहो आहे टेबल जे हेठियां इलाही सारियूं तारियूं पयूं हूंदियूं आहिनि त मूंखे इहो भोंदा करे करंट न लॻी त मां इलाही खेचल कंदी आहियां, खेचली ॿार आहियां न तॾहिं। सो ही लास्ट ट्रेक असां पंहिंजी लिस्ट में रखी छॾियो आहे जेको असां बिल्कुलु इंजॉय कंदासीं। हदीका ज्ञानी जी की आवाज़ में बहुत ही खूबसूरत सा गाना है। अच्छा सो न बाबा विसरियो केर बि कोन्हे को, सभु यादि आहियो।

आशिक अली महते सलाम जी जी, आपका 5 बजे वाला प्रोग्राम 88 पर तो नहीं चलता, वो सिर्फ लाड़काना में चलता है, तो आप फेसबुक पर हमें सुन सकते हैं। अच्छा अख्तियार अली सिंधी भाई हमारे साथ मौजूद है, मैं ठीक हूँ, आप बताएं कैसे हैं। किशोर भाई कहते हैं सैया बाबा जितना देर करोगी हम उतनी देर बाद कमेंट करेंगे, ता लगे तो लास्ट में तो कमेंट कया ही कोनन के जगह बस स्टार्टिंग में कया। पर हमें मसलू थी भैया छा भला अजकल तो।

पे रशीद को सो भाई थैंक यू तमासे से गड आयो नहीं आज वाकई मेरा मूड अच्छा था और क्यों अच्छा था ये मुझे नहीं पता बस मुझे मूड ही है उदवा चाइना का मूड है भाई कभी भी खराब कभी भी सही किशोर भाई कहते वर्डो वांदो बैठो आई पो भी कमेंट में देर तो करी कुटकी खाइंद नहीं नहीं कुटकी नड जो मां भलो मणू आयो सब पढ़ंदासीं सब कमेंट पढ़ंदासीं गोले गोले पढ़ंदासीं अखलाक भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं।

सो बिल्कुल हमारे जाने का वक्त आ चुका है. तमाम खा वठूं था इजाजत वरी मिलूं था तमाम सा पंची बच्ची वाले प्रोग्राम में. अच्छा जे नता पोस्ट के लाइक शेयर ना कयो करे वठो बाबा करे वठो दिसो लास्ट टाइम थी तमाम जल्दी कयो इन का पोई तमाम का मोकल वठूं था पंजे बजे ज्वाइन कजो ए किथे का गलती थी हुजे त माजरत कयूं था. जना फीडबैक रहजी वया है ने कानाडा रहजी वया है सबनी का माजरत सो मोकलानी ना है बाबू सिन सलामत सा सलामत अल्लाह हाफिज़ बाय बाय लव यू ऑल एंड टेक केयर.

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: हंधनि ॾांहुं मुंतकिल कयो पियो वञे, वधीक बरसाति ऐं इम्कानी मोड़ सबबि एन डी एम ए ऐं सूबाई मैनेजमेंट अथॉरिटी जूं टीमूं मदद लाइ तयार आहिनि। सिंध जे सीनियर वज़ीर शर्जीली नामेमण चयो आहे त कराची जे मसइलनि जे ज़िमेवार एम क्यू एम आहे। हिकु साज़िश तहत हड़तालूं करे सनअतनि खे तबाह कयो वियो। मुस्तफ़ा कमाल ऐं ख़ालिद मकबूल सिद्दीकी जी हड़तालुनि जी हिमायत वारियूं वीडियोज़ अॼु बि मीडिया वटि मौजूदु आहिनि। हिकु हिकु हड़ताल दौरान 30, 40 ऐं 50 ताईं लाश खयां वेंदा हुआ। कराची में मीडिया सां ॻाल्हाईंदे शर्जीली नामेमण चयो त नफ़रत जी सियासत कंदड़ जमायतूं पंहिंजे ई सूबे खे बदनाम कनि थियूं। कराचीअ जा मसला हल करण लाइ मुस्बत ऐं ज़िमेवाराणी सियासत जी ज़रूरत आहे। पीपी हमेशह क़ौमी मुफ़ाद खे अवलियत ॾिनी आहे। सिंध जा माण्हू बाशऊर ऐं समझदार आहिनि। उहे ॾिसनि पिया त हर ॾुखे वक़्त में केरु साणनि गॾु बीहे थो। क़ौमी अवामी तहरीक जे सरबराह अयाज़ लतीफ़ अली जो चयो आहे त सिंध खे नओं सूबो न पर वसीला, इंसाफ़, अमुन, बराबरी, रोज़गार, तालीम ऐं पाणी घुर्जे। ख़राब हुकुमरानीअ जो हल सिंध जे विरांगे ते ॻोल्हण बदिरां असुल बीमारी ऐं वसीलनि जी फुरलुट खे ख़तमु करणु घुर्जे। कराची सिंध जो तारीख़ी तकगा ऐं अणटुट हिसो आहे। नए सूबे जे नाले ते सिंध खे विरिहाइण या मकानी हुकूमतनि जे सुधारनि खे सूबाई ख़ुदमुख़्तियारी ख़िलाफ़ इस्तेमालु करण वारी हर कोशिश खे सिंध जो आवाम नाकाम बणाईंदो। तालीम खाते में बदिलियुनि मुक़ररीनि जे नाले ते थींदड़ करप्शन ते 4 सेक्शन आफ़िसरनि खे हटायो वियो। हटायल आफ़िसरनि में हसनैन अब्बासी, अली अकबर प्रगड़, ख़ालिद जमाली ऐं तारिक हुसैन शामिल आहिनि। ई ट्रांसफर पॉलिसी खां सवाइ मनपसंद मुलाज़िमनि खे रिश्वत एवज़ पोस्टिंग ॾियण जा इल्ज़ाम। अली अकबर प्रगड़ खे तालीम खाते मां हटाइण जे हिकु ॾींहुं बाद आपाशी खाते में सेक्शन आफ़िसर मुक़ररु कयो वियो। तालीम वारे वज़ीर ई ट्रांसफर खां सवाइ मनपसंद मुक़ररीन ऐं मुबैना माली बेज़ाबतियुनि जी इंक्वायरी मुक़ररु करे छॾी। प्राइमरी उस्तादनि जे सर्विस स्ट्रक्चर समेत ॿियनि मुतालबनि जी मिंटा लाइ पीटीएल जे सते मुख़्तलिफ़ शहरनि में एहतजाजी मुज़ाहिरा। नौशहरो फिरोज, दादू, कनकोट, नवाबशाह, कुंभ रियासती, पनवाकिल ऐं ॿियनि शहरनि में एहतजाज कयो वियो। अॻवाणनि जो चवणु आहे त जाइज़ मुतालबा तस्लीम न कया विया त एहतजाज जो दायरो वधायो वेंदो।
0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज़।

खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, ठरी रोड, मेहरापुर। 03003385699।

0: कालम में मौजूद आहिन। फौजी बहरन लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी। राबते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793।
1: अस्सलाम वालेकुम अदा।
2: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
1: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
1: न अदा?
0: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
1: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
2: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
1: अदा जल्दी कर, मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
0: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर।
2: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
3: 0301-399-2836।
4: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385569। खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज। एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने, मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385569।

0: आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: इस्लामाबाद के पीएमज अस्पताल में सीडीडी एंजियोग्राफी सहूलत फाल न होने जो नोटिस वे जांच कमेटी जोड़े छी कमेटी के समूरन रुखन जो जायजो वी हकीकतन जो पतो लगाने की हिदायत। कमेटी अस्पताल में 2022 का सीडीडी एंजियोग्राफी की टेक्निकी सहूलत इंसानी वसीलन सॉफ्टवेयर बाबत हकीकतन जायजो वे कमेटी मरीजन के रेफर कर मखसूस निजी इदारे के फायदो पहुंचाने वे मामले जो भी जायजो वी रिपोर्ट वजीर आजम के पेश की। पाकिस्तान ए मलेशिया जो दहशतगर्दी मंशियात के रोकथाम ए इंसानी स्मगलिंग खिलाफ गडियल सहकार वधाने ते इतफाक सदर आसिफ अली जरदारी साहब मलेशिया के गुरु वजीर सैफुद्दीन बिन इस्माइल की मुलाकात सिक्योरिटी के शोबे में सहकार वधाने ते भी जोर भरे वयो। सदर आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान शहर के मलेशिया के मार्केट्स ताईं पहुंच ते जोर भरीदे चयो आहे त मलेशिया में चावर पटाटन कणक ए जानवर की खुराक की तलब मौजूद है। गुरु वजीर मोहसिन नकवी भी मुलाकात में मौजूद हो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो बरसातन ए बोध दौरान फौत थी वयलन खानदानन जी मदद ए तबाह थी वयलन घरन जी बीहर तामीर जो कम इम्कानी बरसातन ए बोध जे नुकसान बाबत थियल इजलास में वज़ीर आज़म पारां बोध मुतासिर इलाइक़न में बिजली ए रोड रस्तन जी बहाली लाइ भी कदम खणण जी हिदायत। वज़ीर आज़म के ब्रीफिंग में बुधायो वियो त मुल्क जे मुतासिर इलाइक़न मां बोध मुतासिरन खे महफ़ूज़ हंधनि ॾांहुं मुंतक़िल कयो पियो वञे। वधीक बरसातन ऐं इम्कानी बोध सबब NDMA सूबाई मैनेजमेंट अथॉरिटी जूं टीमूं मदद लाइ तयारु आहिनि। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील नामेमण है तो कराची के मसलन के जिम्मेवार MQM है। एक साजिश तहत हड़तालू कर सनअतन के तबाह कर वो मुस्तफा कमाल ए खालिद मकबूर सिद्दीकी की हड़ताल की हिमायत वालू वीडियोज अज भी मीडिया वट मौजूद हैं। एक एक हड़ताल दौरान 30-40 50 तीन लाश खाया वा हुआ। कराची में मीडिया से गाले शर्जील नामेमण तो नफरत की सियासत कदड़ जमायतू पैं ही सूबे के बदनाम कन थी। कराची जहा मसला हल कर मुस्बत जिम्मेवारानी सियासत की जरूरत है। पीपी हमेशा कौमी मुफाद की अवलियत दिनी है। सिंध जहा मू बाशूर समझदार हैं उसन पाया तो हर दुखे वक्त में केर साणन गड बीहे तो। कौमी अवामी तहरीक के सरबराह आज लतीफ अली जो है तो सिंध के नो सूबो न पर वसीला इंसाफ अमुन बराबरी रोजगार तालीम ए पानी घुर्जे। खराब हुकुमरानी जो हल सिंध के विरांगे में गोलन बदरा असल बीमारी ए वसीलन की फुलुट के खत्म करण घुर्जे। कराची सिंध जो तारीखी तख्तगाह टुट हिस्सो है। नए सूबे के नाले से सिंध के विरहण या मकानी हुकूमत के सुधारन के सूबाई खुदमुख्तारी खिलाफ इस्तेमाल करण वाली हर कोशिश के सिंध जो आवाम नाकाम बनाई। तालीम खाते में बदलिन मुकररन के नाले से थींदड़ करप्शन से चार सेक्शन ऑफिसरन के हटाया वो। हटायल ऑफिसरन में हसनैन अब्बासी अली अकबर टगर खालिक जमाली ए तारिक हुसैन शामिल। ट्रांसफर पॉलिसी का सिवाय मनपसंद मुलाजमन के रिश्वत एवज पोस्टिंग दियण जा इल्जाम। अली अकबर रगड़ के तालीम खाते में हटाने के एक डी बाद आपाशी खाते में सिलेक्शन सेक्शन ऑफिसर मुकरर कर वो। तालीम वाले वजीर ई ट्रांसफर का सिवाय मनपसंद मुकररन ए मुबैना माली बेजाबकिन की इंक्वायरी मुकरर कर छी। प्राइमरी उस्तादन के सर्विस स्ट्रक्चर समेत बेन मुतालबन की मनता लाए पेट अलिफ के सते मुख्तलिफ शहर में एहतजाजी मुजाहरा। लाड़काणो नौशेरो फेरोज दादू कनकोन नवाबशाह कुम ब्रियास्टी पन्नो आकिल बेन शहर में एहतजाज किया वो। अगवाणन जो चवण है जायज मुतालबा तस्लीम में क्या वह एहतजाज जो दायरो वधायो वेंदो।
0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।

0: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो, जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। 0300-335-69।
1: अदा
2: वालेकुम अस्सलाम। अदा छो परेशान आई?
1: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे?
2: अदा दुकान जी मशहूरी कराई थई
1: न? अदा
3: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
1: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
2: हां दा कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
1: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
3: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर।
2: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
4: 0301-399-2836।
3: आई मोहम्मद उमेर गोरी 0319-15-5-724।
5: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट, बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385699।

0: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चोपर एटमाट, अइंबा अख्तियार 3S डीलर, आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल, कंपनी जे मुकरर कर रेट दे दस्तियाब आहे, सर्विस सेंटर, एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर, सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे, होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स, खुसूसी रियायत ते मौजूद, आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो। कंप्यूटराइज्ड जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर, फ्यूल एडजस्टमेंट जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज्ड जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी, होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी, आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर, राप्ति जिला आसिम हुसैन आराई, 03072 1।
1: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिकर छोड़िए, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक ले बालों की जद इलाज 100 सोम्स एंड PRP ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और से खूबसूरत। स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद खरी रोड मेहरापुर, 03003385569।
2: कराची मंज अहमद सिंध RHMP इस्लामाबाद, होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन, सीनियर लेक्चरर, पैथिक मेडिकल कॉलेज नवा।

ज़िंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 मिंटन ते सिर्फ GFM 88 ने

0: सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: दाखिल कयल दरख्वास्त में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कानून वारे वज़ीर आज़म नज़ीर तारड़ ऐं सुध समा वारे वज़ीर अताउल्लाह तारड़ खे धुर बणायो वियो। वफ़ाक़ी हुकूमत रावलपिंडी में 6 महीननि लाइ फ़ौज मुक़ररु करण जी मंज़ूरी ॾेई छॾी। नोटिफिकेशन मूजिबि रावलपिंडी में फ़ौज मुक़ररु करण जी मंज़ूरी आइन जे आर्टिकल 245 तहत ॾिनी वई। पाक फ़ौज जूं 3 कंपनियूं 6 महीननि ताईं रावलपिंडी में मुक़ररु हूंदियूं। जारी कयल पधिराई मूजिबि फ़ौज ज़िले इंतज़ामिया सां गॾु अमन अमान जी सूरतहाल बरक़रार रखंदी। शहर जे हसास हंधनि ऐं अहम रोडनि रस्तनि ते सिक्योरिटी जे इंतज़ामनि खे असराइतो बणायो वेंदो। फ़ौज मुक़ररी जी मंज़ूरी पंजाब जे घरू खाते जे दरख़्वास्त ते ॾिनी वई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस्लामाबाद जे पिम्स अस्पताल में सीटी क्रोनरी एंजियोग्राफी सहूलत फाल न जो हुअण जो नोटिस वठंदे जांच कमेटी जोड़े छॾी। कमेटी खे संबोधन रुखनि जो जाइज़ो वठी हक़ीक़तनि जो पतो लॻाइण जी हिदायत। कमेटी अस्पताल में 2022 खां सीटी क्रोनरी एंजियोग्राफी जी तकनीकी सहूलत इंसानी वसीलनि ऐं सॉफ्टवेयर बाबति हक़ीक़तनि जो जाइज़ो वठंदी। कमेटी मरीज़नि खे रेफर करण ऐं मखसूस निजी इदारे खे फ़ाइदो पहुचाइण वारे मामले जो बि जाइज़ो वठी रिपोर्ट वज़ीर आज़म खे पेश कंदी। पाकिस्तान ऐं मलेशिया जो दहशतगर्दी मनशियात जी रोकथाम ऐं इंसानी स्मगलिंग ख़िलाफ़ गॾियल सहकार वधाइण ते इतफ़ाक़। सदर आसिफ अली ज़रदारी सां मलेशिया जे घरू वज़ीर सैफुद्दीन बिन इस्माइल जी मुलाक़ात। सिक्योरिटी जे शोबे में सहकार वधाइण ते बि ज़ोर भरियो वियो। सदर आसिफ अली ज़रदारी पाकिस्तान शयुनि जी मलेशिया जे मार्केट्स ताईं पहुच ते ज़ोर भरींदे चयो त मलेशिया में चांवर पटाटनि कणक ऐं जानवरनि जी खुराक जी तलब मौजूदु आहे। घरू वज़ीर मोहसिन नक़वी बि मुलाक़ात में मौजूदु हो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो बरसातनि ऐं बोड दौरान फोत थी वियलनि ख़ानदाननि जी मदद ऐं तबाह थी वियल घरनि जी ॿीहर तामीर जो हुकुम। इम्कानी बरसातनि ऐं बोड जे नुक़सान बाबति थियल इजलास में वज़ीर आज़म पारां बोड मुतासिर इलाइक़नि में बिजली ऐं रोड रस्तनि जी बहाली लाइ बि क़दम खणण जी हिदायत। वज़ीर आज़म खे ब्रीफिंग में ॿुधायो वियो त मुल्क जे मुतासिर इलाइक़नि मां बोड मुतासिरनि खे महफ़ूज़ हंधनि ॾांहुं मुंतक़िल कयो पियो वञे। वधीक बरसातनि ऐं इम्कानी बोड सबबि NDMA ऐं सूबाई डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जूं टीमूं मदद लाइ तयारु आहिनि।
2: पॉलिटिकल पार्टीज जिन्होंने इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया उनको अपनी शिकस्त नजर आ रही। कराची के जो चैलेंजेस हैं उसके सबसे बड़े में बड़ी जिम्मेदार भी और कोई नहीं है, वो MQM है। MQM की वजह से ही कराची के जो निजाम था, चाहे आपके KMC हो चाहे आपकी DMCs हो, इसमें चुन चुन के दहशतगर्दों को भर्ती किया गया। MQM की राबता कमेटी में आज भी देखेंगे तो आधे आपको बलजाती नुमाइंदे मिलेंगे जो कि बलजाती इदारों से तनख्वाह ले रहे हैं और राबता कमेटी में भी बैठे हुए हैं। जो पब्लिक पार्क्स थे उनको शादी हॉल किसने बनाया, आप पूरी लिस्ट उठा के देख ले, सारे MQM लीडर मिलेंगे आपको। जाती तौर पर शादी हॉल चला के और जो उस पर उसको कमर्शलाइज कर रहे थे, यहाँ पे फुटपाथ बेचे गए।
1: सिंधिया सीनियर वज़ीर शजील इनाम मेमन चयो आहे त कराची जे मसलनि जी ज़िमेवार MQM आहे। हिकु साज़िश तहत हड़तालूं करे सनअतनि खे तबाह कयो वियो। मुस्तफ़ा कमाल ऐं ख़ालिद मक़बूल सिद्दीकी जी हड़तालनि जी हिमायत वारियूं वीडियोज़ अॼु बि मीडिया वटि मौजूदु आहिनि। हिकु हिकु हड़ताल दौरान 30, 40 ऐं 50 ताईं लाश खया वेंदा हुआ। कराची में मीडिया सां ॻाल्हाईंदे शजील मेमन चयो त नफ़रत जी सियासत कंदड़ जमातूं पंहिंजे ई सूबे खे बदनाम कनि थियूं। कराची जा मसला हल करण लाइ मस्बत ऐं ज़िमेवारणी सियासत जी ज़रूरत आहे। PP हमेशह क़ौमी मफ़ाद खे अवलियत ॾिनी आहे। सिंध जा माण्हू बाशूर ऐं समझदार आहिनि। उहे ॾिसनि पिया त हर ॾुखे वक़्त में केरु साणनि गॾु बीहे थो। सिहत वारे वफ़ाक़ी वज़ीर मुस्तफ़ा कमाल चयो आहे त सूबे जी ॻाल्हि करणु कुफ़र नाहे, तरीक़ेकार ते ॻाल्हि थी सघे थी। कराची में तकरीब ख़िताब कंदे मुस्तफ़ा कमाल चयो त हीउ निज़ाम 70 सालनि खां नौजवाननि खे गद्दार बणाए रहियो आहे। हालतुनि खां तंग थी माण्हू हथियार खणी जबलनि ते वञी वेठा आहिनि। आइन में सूबा ठाहिण जो तरीक़ो दर्ज आहे। आइन में 27 तरमीमूं थी चुकियूं आहिनि, जंहिंजो मतिलबु आहे त आइन में खामियूं मौजूदु हुयूं। कराची वासी पाणी ख़रीद करे पी रहिया आहिनि। वज़ीरनि ऐं आफ़िसरनि जा टैंकर हली रहिया आहिनि। क़ौमी अवामी तहरीक जे सरबराह आसिफ अली जो चयो आहे त सिंध खे नओं सूबो न पर वसीला इंसाफ अमन बराबरी रोज़गार तालीम ऐं पाणी घुर्जे। ख़राब हुकमरानी जो हल सिंध जे इलाके में ॻोल्हण बदिरां असल बीमारी ऐं वसीलनि जी पुलुट खे ख़तम करणु घुर्जे। कराची सिंध जो तारीख़ी तख़्तगाह ऐं अणटुट हिसो आहे। नए सूबे जे नाले ते सिंध खे विरिहाइण या मकानी वतनि जे सुधारनि खे सूबाई ख़ुदमुख़्तारी हल करण वारी हर कोशिश खे सिंध जो अवाम नाकाम बणाईंदो। तालीम खाते में बदलियन मुकररियन के नारे से थींदड़ करप्शन के चार सेक्शन ऑफिसर के हटाया वो। हटायल ऑफिसर में हसनैन अब्बासी, अली अकबर, खालिक जमाली ए तारिक हुसैन शामिल। मथन ई ट्रांसफर पॉलिसी का सिवाय मनपसंद मुलाजमन के रिश्वत एवज पोस्टिंग देने का इल्जाम। अली अकबर के तालीम खाते में हटाने के एक दिन बाद आबपाशी खाते में सेक्शन ऑफिसर मुकरर किया वो। तालीम वारे वजीर ई ट्रांसफर का सिवाय मनपसंद मुकररीन ए मुबैना माली बेजाबगियन की इंक्वायरी मुकरर करे छी।

0: ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फौजी भाइरनि लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी। राब्ते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-5431-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-1623-793।
1: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन। मजहब सिस्टम में शानदार तालीमी इमारत, प्रोफेसर एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार, मेहनती मुशाक ऑफर, श्री बायोलॉजी की लैब्स, ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जा, एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिल तहसीन नतायज, खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले, तहरीर, तकरीर और जहनी आजमाइश के स्टडी टूर्स, अपनी आंखों के नूर बल्सम, मदर अल्ताफ हुसैन मेमन, मैनेजिंग अफसर स्कूल 0300-4, निसार अहमद गोल सिस्टम मेहरापुर 01-3865-453।
2: मेहरान आलानी होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
3: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तियाब आई।
2: हाँ यचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी।
3: राब्ते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 0300-3204-372 0242-46-0100।

0: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट, बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 0300-33-85-69।
1: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेहरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमपी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर सूमर।

0: वठनी पवंदी माहिरे अमराज नक कन गलो पुराणो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट ॿुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फॉलिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियूं ॿारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-2196-851
1: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए नए बालों की निशोनुमा में मदद दे बालों को घना और सेहतमंद बनाए घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राबता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 03003385569
2: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलेस होंडा मोटरसाइकिल जो पर एतमाद आई मा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टैचिंग मशीन जे ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राब्ते जे लाइ आसिम हुसैन आराई
3: अपना शहर अपना घर मेहरापुर और मेहरापुर की आवाज GAFM 94

0: तव्हांखे प्रोसीजर ख़बर हूंदो, वर्क ख़बर हूंदो, लॉ ख़बर हूंदी, तव्हांखे ऑटोमेटिक कंहिंखे सुठी एडवाइस कयो था। इन्वेस्टमेंट छा आहे? वकालत में पहिरीं इन्वेस्टमेंट आहे, इन्वेस्टमेंट आहे तव्हांजी एडवाइस।
1: एडवाइस
0: अगरि तव्हां कंहिंखे सुठी एडवाइस ॾियणु शुरू था करे छॾियो, तव्हां कॉन्फिडेंस बिल्ड था कयो, तव्हांजी इन्वेस्टमेंट इहा ई आहे, टाइम जेको तव्हां ॾियो था। तव्हांजी लोकेलिटी में मिसाल सपोज़ कुझु आहे, बाबर मुंहिंजो हे इशू आहे, मूंखे एडवाइस खपे। बाबर खे पाण ई ख़बर न हूंदी त एडवाइस काॾो ॾींदो? बाबर खे हुन जे लाइ पढ़णो पवंदो, बाबर खे स्टडी करणी पवंदी। सपोज असां लीगल कॉर्नर ऐं पॉडकास्ट असां शुरू कयो आहे, हिन में असां इम्पार्ट छा था कयूं? एडवाइस इम्पार्ट छा था कयूं? नॉलेज काॾो थी अचे? किताबनि में आहे
1: न, स्टडी करणी,
0: ठीकु आहे। उन खां पोइ जेको पाण जनरल डिस्कशन कयूं था, काॾो था कयूं प्रैक्टिकल वर्क? त प्रैक्टिकल वर्क असां हुते सिखूं था पिया, स्टडी असां किताबनि में कयूं था, पोइ असां हिकिड़ो पूरो पैकेज था थी वञूं था। अगरि असां कंहिंखे सुठी एडवाइस ॾियूं था त डेफिनेटली उहो चार माण्हुनि खे थो ॿुधाए, चार अठनि खे था ॿुधाइनि, अठ सोरहं खे था ॿुधाइनि, कीअं तव्हांजी क्लाइंटेशन
1: वधंदी।
0: लॉयर हू नोस थिंग्स, सो दैट इज़ जेको इनिशियल स्टार्टिंग में जेकी थिए थी की लैक ऑफ स्टडी, लैक ऑफ स्टडी,
1: लैक ऑफ स्टडी, लैक ऑफ
0: स्टडी आहे, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आहे, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर नाहे, ऐं मॉडर्न टेक्नोलॉजी सां अवेयरनेस नाहे, केस लॉस कीअं सर्च करनि हुनजी नो हाउ नाहे, ठीकु आहे, सिर्फ़ फाइल खणी करे कोर्ट ताईं पुॼणु ई वकालत नाहे। हुन केस खे हलाइणो बि आहे, हुन केस खे खटणो बि आहे। अगरि मिसाल इंसान न बि खटे, रिज़ल्ट सलाह जे हथ में आहिनि, पर एतिरी महिनत थियल हुजे अॻिलो तव्हांखां सेटिस्फाई थी वञे। सो दीज़ आर द कॉमन मिस्टेक, के जेसि ताईं तव्हां वटि केसिस नथा अचनि, तव्हां पंहिंजे सीनियर जे अंडर पढ़ो, सीनियर जे अंडर सिखो, सीनियर जेकी इंस्ट्रक्शन ॾे हुनखे फॉलो
1: फॉलो कयो।
0: अगरि मिसाल तव्हांखे काई शइ मिले त उहा गाइडेंस वठो, नथी सम्झ में अचे पुछो। इवन एतिरे क़दुरु अगरि तव्हांखे कोर्ट रीडर खां बि पुछणो पए न, सर मूंखे नथी सम्झ में अचे, तव्हां हुनखां ई शइ पुछो वञी करे। पुछणो न मुंझणो, जे तव्हां को कॉमन मिस्टेक्स न थिए, जजनि जे साम्हूं तव्हांखे एग्रेशन नाहे ॾेखारिणो, ठीकु आहे, तव्हांखे हम्बल तरीक़े सां, छोकी तव्हांखे रिलीफ वठिणो आहे, तव्हां हम्बल तरीक़े सां हुननि खे ट्रीट कयो, ठीक, पंहिंजे क्लाइंटेशन जे करे, क्लाइंटेशन जे करे तव्हांखे कोर्ट स्टाफ सां नाहे विहणो, छो अल्टीमेट पर्पज छा आहे? टू गेट द रिलीफ। रिलीफ ईअं ई मिलंदो न अगरि तव्हांजो बिहेवियर
1: तव्हांखे
0: त पोइ रिलीफ कीअं मिलंदो? दे आर द एग्रेसिव, हाणे तव्हांजो ठहियल टुक रिलीफ बि तव्हांजे हथ मां निकिरी वेंदो। इन जे करे तो बी हम्बल, सबमिशन इज़ अ बेस्ट पॉलिसी। ईअं न आहे त सबमिशन में माना तव्हां किरिया पिया हुजो, डज़न्ट मीन। सबमिशन जो मतिलबु इहो आहे की बी हम्बल इन योर नेचर। अगरि तव्हां उहो थी था वञो त पोइ इन में इहो आहे त तव्हांजी क्लाइंटेशन बि वधंदी, तव्हांजो एटीट्यूड बि सुठो हूंदो, ऐं प्लस में तव्हांखे सुठो रिलीफ बि मिली सघे थो। सॼियूं ॻाल्हियूं हिकु तरफ़, मेन जेकी ॻाल्हि आहे उहा इहा आहे त अगरि तव्हांखे लॉ जी फील्ड में अचिणो आहे त तव्हांखे स्टडी करणी आहे, तव्हांखे स्टडी करणी आहे, तव्हांखे ड्राफ्टिंग बि सिखणी आहे, तव्हांखे मॉडर्न टेक्नोलॉजी सां अवेयर बि हुजणो आहे, कंटेम्प्रेरी स्टडी बि तव्हांजी हुजे, प्लस में तव्हांखे जेको आहे न पंहिंजी जेकी रुटीन वाइज़ जेके केसिस आहिनि उन ते बि नो हाउ हुजे।
1: ख़ाली डिग्री जेकी आहे त तव्हां जेकी कम जी न रहंदी, ईअं आहे। ख़ाली डिग्री सां गॾु आहे त लॉयर चवराए सघे थो पाण, पर लॉयर बि नॉलेज हुजे न?
0: अगरि मिसाल तव्हां डिग्री त वठी आहे, तव्हां नॉलेज ई न, त छा कंदो?
1: एडवाइस तव्हां काफ़ी सारी ॾेई वियो, पर मां हिकिड़ी एडवाइस अञा तव्हांखां वठंदुसि। जेके लॉ स्टूडेंट्स आहिनि स्पेशली, उहे दौरान स्टडी जेको आहे स्टडी खे टाइम घटि ॾींदा आहिनि ऐं प्रैक्टिस जी तरफ़ हलिया वेंदा आहिनि, कोर्ट जी तरफ़ हलिया वेंदा आहिनि, इवन सेकेंड ईयर में ई हलिया वेंदा आहिनि, उन्हनि खे तव्हां छा एडवाइस ॾींदा?
0: मां पंहिंजे कॉलेज में जिते मां पढ़ाईंदो आहियां, मां ॿारनि खे बि इहो ई सम्झाईंदो आहियां की तव्हांखे हफ़्ते में अगरि सपोज़ चार ॾींहं, तव्हांजी चार ॾींहं पंज ॾींहं क्लासिस हलनि थियूं, तव्हांखे ॿ ॾींहं मिलनि था, फ्राइडे ऐं सैटरडे। जेके फ्राइडे बि क्लास हले थी, सैटरडे तव्हांखे मिले थो पियो। अगरि तव्हांजे अंदरि शौक़ु आहे सिखण जो, की मां प्रैक्टिस करणु चाहियां थो, तव्हां वीकेंड में हिकिड़ो ॾींहुं मुक़ररु कयो। उन वीकेंड में तव्हां कंहिं सीनियर खां परमिशन वठी छॾो, या इंडिविजुअल बेसिस ते तव्हां पाण कोर्ट अचो, तव्हां लाइब्रेरी में पंहिंजा को दोस्त आहिनि, कोलीग्स आहिनि, या तव्हांजा सीनियर आहिनि, भाइर आहिनि, ब्रादर्स
1: आहिनि,
0: या तव्हांजा पाड़े वारा आहिनि जेके वकालत करनि था पिया, शाम जे टाइम तव्हां हुननि जे चैम्बर्स ते हलिया वञो। वीकेंड में हिकिड़ो ॾींहुं ॾियो, वीकेंड में ॿ ॾींहं ॾियो, बाक़ी जेके चार ॾींहं आहिनि पंज ॾींहं उहो तव्हां पंहिंजी स्टडी खे ॾियो। जेको टीचर अचे थो कुझु सिखाइण थो अचे, सपोज बेसिक नॉलेज अगरि तव्हांखे हूंदी न त प्रैक्टिस में अचण जे टाइम तव्हांखे तकलीफ़ न थींदी। अगरि तव्हां वटि बेसिक नॉलेज न हूंदी तव्हां प्रैक्टिस में अची करे वरी उहे पंजनि सालनि जी महिनत कंदो, वरी तव्हां उहो जेको आहे न थियोरेटिकली जेको तव्हां न पढ़ी सघियो, वरी तव्हां प्रैक्टिकल लाइफ में अची करे सिखी, माना जे सिखण वारे प्रोसेस सां हुनखे सिखी वठंदो।
1: सही था चओ।
0: बहितर इहो ई आहे त तव्हां, मुंहिंजी सजेशन इहा ई आहे की अगरि तव्हांखे इंट्रस्ट आहे, शौक़ु आहे, माना न आहे, पर एटलीस्ट तव्हांजो जेको प्रैक्टिसिंग ईयर हुजे न, उहो तव्हांजो फोर्थ ईयर हुजे या फाइनल ईयर हुजे,
1: ओके ओके,
0: उन में तव्हां साल पंहिंजो भले तव्हां पंहिंजो अचो, पंहिंजे सीनियर्स खे ज्वाइन कयो, छोकी तव्हां 90% कोर्स पंहिंजो कवर करे चुका
1: हूंदा, तव्हांखे
0: बेसिक नॉलेज मिली चुकी हूंदी आहे, क्रिमिनल जी नॉलेज तव्हांखे मिली चुकी हूंदी आहे, फैमिली जी नॉलेज मिली चुकी हूंदी आहे, कॉन्स्टिट्यूशनल नॉलेज तव्हांखे मिली चुकी हूंदी आहे, अनु शहादत जी तव्हांखे नॉलेज मिली, स्पेसिफिक रिलीफ जी तव्हांखे नॉलेज मिली चुकी हूंदी आहे, लैंड लॉज जी तव्हांखे जेको आहे न नॉलेज मिली चुकी हूंदी आहे, रेंट लॉज जी तव्हांखे नॉलेज, हाणे सिर्फ़ु तव्हांखे विद इन आख़िरी साल में छा करणो हूंदो आहे, पाण खे पॉलिश करणो हूंदो आहे, जंहिंमें असां छा चवंदा आहियूं, जंहिंमें इंटर्नशिप बि ॿार जॉइन करे छॾंदा, उन सां छा थींदो आहे, तव्हांखे ड्राफ्टिंग सिखणु, सबमिशन, अपीरिंग, ऐं तव्हांखे जेको आहे न कोर्ट में कीअं तव्हांखे पंहिंजे केस खे रिप्रेजेंट कजे, उहे शयूं तव्हांखे सेखारी वेंदियूं, जेके अॻिते हली तव्हांखे प्रैक्टिस में कमु ईंदियूं।
1: ऑल राइट, शेबा साहब, थैंक यू सो मच, तव्हां पंहिंजो टाइम ॾिनो ऐं असांजे अॼु जे टॉपिक ते तमामु सुठी नॉलेज असांजे लिसनर सां एज़ वेल एज़ असांजे व्यूअर सां तव्हां शेयर कई, अवांजा थैंकफुल आहियूं।
0: मां वंस अगेन तव्हांखे चवंदुमि की फीडबैक लाज़मी आहे, अगरि सपोज़ असां को ओपिनियन ॾिनो आहे, अगरि कोई ओपिनियन सां अगरि डिफरेंस रखे थो पियो, तव्हां पंहिंजा फीडबैक ॾियो, बाबर तव्हां सां नंबर शेयर कंदो, ऑनलाइन बि
1: असां
0: फेसबुक ऐं इंस्टा ऐं व्हाट्सअप ते जेके बि मीडियम्स आहिनि उते असां वेंदा आहियूं, अगरि को ओपिनियन कंहिंखे लॻो के न वकील साहब जो ओपिनियन सही न ॾिनो आहे चङे तरीक़े सां, त तव्हां असांखे ओपिनियन करेक्ट कराए सघो था, ईंदड़ प्रोग्राम में असां हुनखे करेक्ट करे
1: छॾंदासीं,
0: छोकी हर ॾींहुं सिखण जो ॾींहुं हर जॻह, कुल इल्म त असां बि न
1: आहियूं,
0: जेको असांखे वक़्तु ॾिनो आहे असां उन जो ई फ़ाइदो वठी करे तव्हां ताईं ॻाल्हियूं पुॼायूं था पिया।
1: ऑल राइट, सो बिल्कुलु व्यूअर्स, तव्हांजी फीडबैक जो असांखे इंतज़ारु रहंदो, असांजो नंबर आहे 03000113488। अॻिले प्रोग्राम में वरी नए मौज़ू सां गॾु अवां सां मुलाक़ात थींदी, तेसी ताईं अलाह हाफ़िज़ ऐं ज़िंदगी बख़ैर।
2: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
3: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
2: जीए एफएम 88 नेटवर्क,
3: सिंध की आवाज।
4: छा तवां भी पंहिंजो ख्वाबनि जो घर हिकु अहिड़ी जाइ ते ठाहिण चाहियो था, जिते हुजे तहफ़ुज़, जदीद सहूलियतूं ऐं मंज़ूर थियल सिक्योरिटी?
5: त पोइ भली कार, हुसैनी मंज़िल हाउसिंग स्कीम सखर में,
4: सखर शिकारपुर रोड ते,
5: डॉक्टर
6: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज़।
7: पर न चढ़ो।

0: वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ जो बरसातनि ऐं बोड दौरान फौत थी वियलनि ख़ानदाननि जी मदद ऐं तबाह थी वियल घरनि जी ॿीहर तामीर जो कमु इम्कानी बरसातनि ऐं बोड जे नुक़सान बाबति थियल इजलास में वज़ीर आज़म पारां बोड मुतासिर इलाइक़नि में बिजली ऐं रोड रस्तनि जी बहाली लाइ बि क़दम खणण जी हिदायत। वज़ीर आज़म खे ब्रीफिंग में ॿुधायो वियो त मुल्क जे मुतासिर इलाइक़नि मां बोड मुतासिरनि खे महफ़ूज़ हंधनि ॾांहुं मुंतक़िल कयो पियो वञे। वधीक बरसातनि ऐं इम्कानी बोड सबबि एन टी ए में ऐं सूबाई डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जूं टीमूं मदद लाइ तयारु आहिनि।
1: पॉलिटिकल पार्टीज जिन्होंने इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया उनको अपनी शिकस्त नजर आ रही थी। कराची के जो चैलेंजेस हैं उसके सबसे बड़े में बड़ी जिम्मेदार भी और कोई नहीं है, वो एमक्यूएम है। एमक्यूएम की वजह से ही कराची के जो निजाम था, चाहे आपके केएमसी हो चाहे आपकी डीएमसी हो, इसमें चुन चुन के दहशतगर्दों को भर्ती किया गया। एमक्यूएम की राबता कमेटी में आज भी देखेंगे तो आधे आपको बलदियाती नुमाइंदे मिलेंगे जो कि बलदियाती इदारों से तनख्वाह ले रहे हैं और राबता कमेटी में भी बैठे हुए। जो पब्लिक पार्क थे उनको शादी हॉल किसने बनाया, आप पूरी लिस्ट उठा के देख ले, सारे एमक्यूएम लीडर मिलेंगे आपको। जाती तौर पर शादी हॉल चला के और जो उस पर उसको कमर्शलाइज कर रहे थे, यहाँ पे फुटपाथ बेचे गए।
0: सीनियर वज़ीर शरीर लाल मेमण चयो आहे त कराची जे मसइलनि जी ज़िमेवार एमक्यूएम आहे। हिकु साज़िश ते हड़तालूं करे सनअतनि खे तबाह कयो वियो। मुस्तफ़ा कमाल ऐं ख़ालिद मक़बूल सिद्दीकी जी हड़तालुनि जी हिमायत वारियूं वीडियोस बि अॼु बि मीडिया वटि मौजूदु आहिनि। हिकु हिकु हड़ताल दौरान 30, 40 ऐं 50 ताईं लाश खया वेंदा हुआ। कराची में मीडिया सां ॻाल्हाईंदे सुशील मेमण चयो त नफ़रत जी सियासत कंदड़ जमातूं पंहिंजे सूबे खे बदनाम कनि थियूं। कराची जा मसला हल करण लाइ वसपत ऐं ज़िमेवारनी सियासत जी ज़रूरत आहे। पीपी हमेशह क़ौमी मफ़ाद खे अवलियत ॾिनी आहे। सिंध जा माण्हू
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: मेहरान आयरन स्टोर हालाणी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
4: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश ऐं रंग वगैरह बाजार खां बारिया दस्तियाब आहिनि।
3: हाणे ई अचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालाणी।
4: राब्ते लाइ प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 03003204372 ऐं 02424601000।

कॉलम में मौजूद आहिनि। फौजी ॿाहिरनि लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी। राब्ते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-54-3456 ऐं तौकीर अहमद 0306

मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है। सुनते रहो GFM 94। अपना शहर अपना घर मेहराबपुर, और मेहराबपुर की आवाज GFM 94।

उम्मीद आहे तव्हां सभु खैरे सां हूंदा ऐं मां आहियां जो होस्ट एहसान अली सियाल ऐं अव्हां सभु ॿुधी रहिया आहियो ज़ी एफ एम 94 जे लाइव स्टूडियो मां प्रोग्राम सिहत जी ॻाल्हि। जीअं त लिसनर्स, अल्लाह पाक जूं हज़ारे नेमतूं असां वटि मौजूदु आहिनि, पर उन्हनि मां सभु खां वॾी नेमत सिहत जी आहे। जॾहिं तंदुरुस्ती हुजे थी, तॾहिं ज़िंदगी जो हर लम्हो ख़ूबसूरत ऐं बावफ़ा लॻंदो आहे। प्रोग्राम सिहत जी ॻाल्हि में असांजे स्टूडियो में मौजूदु हूंदा आहिनि डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमूर साहबु, जेके मुख़्तलिफ़ बीमार बाबति ॼाण ॾींदा आहिनि।

0: डॉक्टर हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर के सूमर से सुबह 10 खां शाम 5 वगे तई जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वदन पोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी रोड मेरापुर में मरीजन जो इलाज कंदा आएं। असा के प्रोग्राम के लाइव कॉल जरिए शामिल थी सको था। लाइव कॉल जो नंबर है 0301-9196-851। सब खां पहिरां त असां डॉक्टर साहब खे पंहिंजे प्रोग्राम में ख़ुश आमदीद चवंदासीं। डॉक्टर साहब अस्सलाम अलैकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम।
0: डॉक्टर साहब कीअं आहियो? तबियत सां ठीकु आहे?
1: जी साईं, अलाह ताला जा करुणा अहसान।
0: डॉक्टर साहब, अॼु कहिड़े मौज़ू बाबति असांजे लिसनर्स खे ॼाण ॾींदा? सर,
1: औज़ु बिल्लाहि मिन शैतान रजीम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पहिरां त सभु तारीफ़ूं उन रब पाक जूं जेको असांखे चाढ़े थो, उघारे थो, रोज़ी ॾिए थो, ख़ुशी ॾिए थो ऐं सभिनी ज़मीनी आसमानी आफ़तुनि खां महफ़ूज़ रखे थो। असांजो प्रोग्राम सिहत जी ॻाल्हि बर वक़्तु हिन टाइम ते नशर थींदो आहे ऐं अव्हांखे ख़बर आहे त असांजी क्लिनिक जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक अव्हांजे शहर मेहराबपुर में मौजूदु हूंदी आहे। एड्रेस अव्हांखे अहसन भाई बि नोट कराईंदा ऐं आऊं बि अव्हांखे नोट कराईंदो हलंदुसि त वधण पोटा पेट्रोल पंप जे बिल्कुलु साम्हूं कोचड़ी रोड ते। टाइमिंग सुबुह जो 10 बजे खां शाम जो 5 बजे ताईं। डेज ॾींहंनि जे हवाले सां अव्हांखे सभिनी खे दोस्तनि खे ख़बर आहे त अंगारो असांजी क्लिनिक जेको आहे सो ऑफ हूंदी आहे, क्लिनिक बंदि हूंदी आहे। बक़ाया ॿिया जेको आहे सो हफ़्ते जा जेके बि ॾींहं आहिनि उहो क्लिनिक ते मौजूदु हूंदा आहियूं। इन में स्पेशली हफ़्ते जा टे ॾींहं जुमो छंछरु आचरु, जंहिं बिल्कुलु जुमे जो ॾींहुं, छंछरु जो ॾींहुं, आचरु जो ॾींहुं चेकअप फीस फ्री हूंदी आहे, बाक़ी दवाऊं मरीज़ खे वठणियूं हूंदियूं आहिनि। अहिड़े तरीक़े सां जेको आहे सो अव्हांखे ख़बर आहे त प्रोग्राम सिहत जी ॻाल्हि में मुख़्तलिफ़ मौज़ूआतुनि ते जेको आहे सो असां ॻाल्हाईंदा आहियूं, मुख़्तलिफ़ बीमारियुनि जे हवाले सां, टिप्स जे हवाले सां, जेके बि रोज़मर्रा तव्हां ॾिसो था नंढियूं वॾियूं बीमारियूं आहिनि उन्हनि जे हवाले सां अवेयरनेस। ऐं प्रोग्राम जो मक़सदु बि इहो ई हूंदो आहे त अवेयरनेस ॾियणु। सो अवेयरनेस असां पंहिंजे ॿुधंदड़नि ताईं जेको आहे सो पहुचाईंदा आहियूं। असांजा जेके बि लिसनर्स हूंदा आहिनि उहे उन्हनि खे ॿुधंदा आहिनि ऐं तमामु जेको आहे सो हिकिड़े क़िस्म जो ईअं सम्झो त मुस्तफ़ीद थींदा आहिनि ऐं उनखां पोइ जेके टिप्स वग़ैरह ॿुधाईंदा आहिनि उन मां बि मुस्तफ़ीद थींदा आहिनि। अहिड़े तरीक़े सां असां वटि ख़ासि करे जेके ज़्यादा पेशंट्स जिन ॾींहंनि में ईंदा आहिनि, पोइ कोशिशि कंदा आहियूं त असां उन बीमारी खे महसूसु कंदा आहियूं त उहा बीमारी अॼुकल्ह ज़्यादा आहे, पोइ उनखे हाईलाइट करण जे लाइ अव्हां ताईं प्रोग्राम में उन्हनि जे लाइ जेको आहे सो उहा छो बीमारी छो थींदी आहे ऐं उनखे बीमारी खे कीअं रोके सघिजे थो या उन बीमारीअ जे लाइ कहिड़ा टिप्स इस्तेमालु करे सघजनि था। त उहो ईअं थींदो आहे जो बर वक़्तु माण्हू पेशंट खे जेकॾहिं इहा बीमारी थी वञे, का बि बीमारी अहिड़ी, त हू उन बीमारी खे सुञाणे सघे, सम्झे सघे ऐं फ़िलहालु उन पाण खे फर्स्ट एड ॾियारे सघे ऐं उन डॉक्टर ताईं पहुची सघे। छो जो अॼुकल्ह जेको आहे सो सेल्फ मेडिकेशन्स तमामु घणी थी पई आहे ऐं पेशंट सेल्फ़ मेडिकेशन जो मक़सदु इहो हूंदो आहे त पाण मुरादो मरीज़ जेको आहे सो वेंदो आहे स्टोर तां ऐं दवाई वठी ऐं इस्तेमालु कंदो आहे या स्टोर वारा पंहिंजी मर्ज़ी सां जेको आहे सो अॼुकल्ह त सुयूं बि जेको आहे सो हुननि खे हणी छॾनि था आहिनि। लेकिन अव्हांखे ख़बर आहे त इन्हनि जा एॾा वॾा साइड इफ़ेक्ट्स आहिनि जेकॾहिं पेशंट मरीज़ जेके इस्तेमालु कनि था त उहे उन सां वीचारनि सां मजबूरी बि हूंदी आहे जो ज़ाहिरी आहे त जेको आहे सो

0: तव्हां ॼाण हासिल करे सघो था। जी डॉक्टर साहब, काल जी तरफ रहंदासीं।
1: जी सी, बिल्कुल।
0: अस्सलाम वालेकुम।
2: अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम सलाम।
2: नहीं डॉक्टर साहब सां ॻाल्हायूं बाबा।
0: जी बाबा, छा पुछंदा चाहींदा डॉक्टर साहब? मुखातिब आहे
2: साईं पीर सां ॻाल्हायां। मां चलो आमर सां ॻाल्हायां सर।
0: जी जी सर।
2: पर कंहिं टाइम में मूंखे सूर बूर थियल में वरी एक्सरो करा त मूं हुन में गुर्दे में मूंखे पथरियूं।
0: अच्छा,
2: पोइ डॉक्टर कंहिंखां हिकु ॿिनि खां सलाह पुछी आहे, चवनि था ऑपरेशन कराइजे।
0: सही।
2: पोइ हाणे डॉक्टर खां पुछियो त दवा हिनजी आहे त पोइ मां इहे टेस्टूं वेस्टूं जेके कराईंदमि उहे बि खणी अचां, ऐं जीअं थी वञे त पोइ असां हेॾे सुभाणे परीहं जीअं मां चयो असांखे।
0: जी जी, बिल्कुलु ठीकु आहे। डॉक्टर साहिब वटि हिन महिल बि असां पढ़ी वियासीं त बग़ैर ऑपरेशन जो इलाजु मौजूदु आहे। वधीक तव्हां एफ एम ॿुधो, डॉक्टर साहिब मूंखे ॿुधाए थो।
1: जी बिल्कुलु, अचो। आवाज़ जो इशू उहो हुयो, थोरो आवाज़ु बिल्कुलु घटि पियो आहे दोस्त जो। सो असां पंहिंजे प्रोग्राम जी शुरूआत में ई जेको आहे सो आवाम उन्हनि खे ॿुधायो त इहो ॿुधाए वेंदा आहियूं त चाहे पथरी आहे, चाहे बवासीर आहे, या अहिड़े क़िस्म जा जेके चाहे गुर्दे में पथरी आहे, पिते में पथरी आहे, बग़ैर ऑपरेशन जे उनजी ट्रीटमेंट असांजे होम्योपैथिक दवा जे रस्ते मौजूदु हूंदी आहे। वधीक ॾिसो, शर्तीअ इलाज केर बि कोन कंदो आहे, न वरी असां कंदा आहियूं। असां हिकिड़ो शिफ़ा अलाह ताला जे हथ में आहे। इहो ई सबबु आहे जो दवा जॾहिं ॾींदा आहियूं त मरीज़ खे असां कोन जेको आहे सो मजबूर कंदा आहियूं या चवंदा आहियूं त तव्हां अची फ़ोन ते ॿुधायो। हू हिकिड़ो इनकरेज करण जे लाइ, यानी हिमथाइण जे लाइ असांखे, या जेको आहे सो जेके ॿिया उहे वीचारा ग़रीब हज़रात, उहे दोस्त जिन खे इहा तकलीफ़ आहे ऐं हू नंढड़ी पथरीअ जे करे या वॾी पथरीअ जे करे सिधो उते वञी ऑपरेशन कराइनि था, इहे उन्हनि खे ॿुधाइण जे लाइ, उन्हनि खे सम्झाइण जे लाइ इतलाही वेंदा आहिनि ऐं कॉल करे ॿुधाईंदा आहिनि त तव्हां जो हरूभरू पाण खे अधु कयो था या डॉक्टरनि वटि वञो था, ऑपरेशन करायो था, ऐं उहा पथरी अॻिते हली वरी जेको आहे सो तयारु थी वञे थी। त इन खां बहितरु आहे त होम्योपैथिक इलाजु अवां करायो। होम्योपैथिक में बग़ैर ऑपरेशन जे पथरी 20 mm ताईं पथरी असां वटि पेशंट जी निकिती आहे, ऐं हिकु न अठ अठ ॾह ॾह पथरियूं बि निकितियूं आहिनि। सो इन जे करे वधीक शिफ़ा वरी बि आख़िर में इहा ई ॻाल्हि कंदा आहियूं त अलाह ताला ॾींदो आहे। बाक़ी जेको आहे सो असां क्लिनिक ते मौजूदु हूंदा आहियूं, टेस्टूं वग़ैरह जेके आहिनि उहे खणी आई पेशंट खे चवंदासीं त ॾेखारे वञनि।
0: डॉक्टर साहिबु, हिकु ॿी कॉल जी तरफ़ हलंदासीं। अस्सलाम वालेकुम। जी अदा, अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम।
0: जी अदा, छा पुछणु चाहींदा डॉक्टर साहिबु खां? ऐं केरु किथे था ॻाल्हायो? जी
3: गोॾनि में सूरु आहे बाबा, गोॾनि जो सूरु कोन थो छॾे।
0: अच्छा, उमिरि घणी आहे?
3: उमिरि साईं 20 साल खनि आहे।
0: किथां पिया ॻाल्हायो?
3: रसूलाबाद खां बाबा, ॻोठु बचल बंबरो, जनेसर कंबाणी।
0: ठीकु आहे डॉक्टर साहिबु, तव्हां खे ॿुधाए थो, रेडियो ॿुधो।
1: ठीकु आहे, हीअ अदे जी का एज न आहे, अहिड़ी उमिरि न आहे जंहिंमें अहिड़े क़िस्म जी का पुराणी तकलीफ़ हुजे। ईअं वाहिबादीअ जो सूर बि थी सघे थो। जेकॾहिं हा हिकिड़ो घणे वक़्त खां हुनखे रहंदड़ आहे त उनजी ट्रीटमेंट मुकमल थी सघे थी। बकाया हू जेको आहे सो जेकॾहिं ईअं उनखे वाहिबादी ॻाल्हि कई, सरहं जे तेल में हेड विझी उहो लॻाए, ऐं या राति जे टाइम में खीरु गरम करे उन में हेड विझी, ऐं उहो बि खीरु पी सघनि था इनशाला ताला, उन सां बि काफ़ी अफ़ाको थी सघे थो। लेकिन जेकॾहिं इन जे बावजूदु उनखे उन इहो कुझु कयो आहे ऐं फ़र्क़ु न पियो आहे त कुझु असांजे होम्योपैथिक मेडिसिन्स आहे, उहे ट्रीटमेंट वठी सघनि था इनशाला ताला, उन सां बि काफ़ी फ़ाइदो पियो।
0: जी, लाइव कॉल जो नंबर आहे प्रोग्राम में 0301-96-8051। इन ते तव्हां कॉल करे कंहिं बि बीमारी बाबति ॼाण हासिल करे सघो था।
1: जी बिल्कुलु, पंहिंजे असां ॿुधंदड़नि ताईं इहो पैगाम ज़रूरु पहुचाईंदासीं त जेकॾहिं कंहिं बि बीमारी जे मुतालिक़ या शेड्यूल जे मुतालिक़ अव्हांखे पुछणो आहे त कॉल नंबर मौजूदु आहे 0301-21-96-851, यानी 0301-21-96-851, यानी 0301-21-96-851 ते कॉल करे तव्हां पंहिंजो मसइलो ॿुधाए सघो।
0: वरी महिरबानी सर। सर, हाणे वक़्तु थियो आहे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक जो, त हलूं था शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक जी तरफ़। गॾु गॾु रहिजो ऐं ॿुधंदा रहो GFM 94।